नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को संबोधित करने की अनुमति देने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। भारत ने पिछले दो महीनों में बांग्लादेश को लगभग 500 टन हिल्सा मछली का निर्यात किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 3 नागरिकों की हत्या की। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1410 हुई। 6145 लोग अभी भी लापता। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। अमेरिका ने इससे पहले महमूद अब्बास को न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था। प्रस्ताव कल भारी बहुमत से पारित हुआ। इसके पक्ष में 152 देशों ने मतदान किया, जबकि अमरीका, इसराइल और पराग्वे ने इसके विरोध में वोट किया। 4 देश मतदान से दूर रहे। चीन और रूस ने भी अब्बास को वीजा नहीं देने के अमरीकी फैसले की आलोचना की थी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सेना प्रमुख आज मॉस्को स्थित राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख

0: अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने थिम्फू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और भूटान के बीच विशेष मित्रता को और मजबूत करने के लिए भूटान नरेश का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश से भारत आने वाली हिल्सा मछली अब भारत से बांग्लादेश निर्यात की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार पिछले दो महीनों में भारत से करीब 500 टन हिल्सा बांग्लादेश भेजी जा चुकी है। कारोबारियों को जल्द ही 150 से 200 टन अतिरिक्त हिल्सा निर्यात होने की उम्मीद है। परंपरागत रूप से बांग्लादेश की हिल्सा का भारतीय बाजार विशेषकर पश्चिम बंगाल में वर्चस्व रहा है, लेकिन बांग्लादेश में घरेलू उत्पादन घटने से भारतीय हिल्सा की मांग बढ़ी है। निर्यात की गई हिल्सा की बड़ी मात्रा गुजरात के भरूच से भेजी गई है, जबकि कुछ खेप पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित थोक मछली बाजार से बांग्लादेश पहुंची है। हिल्सा की चटगांव और सिलहट में विशेष मांग है। विश्व दर्पण के लिए नवीन सक्सेना।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों ने कल से स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान शुरू किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली और अपने परिसरों में सफाई अभियान चलाया। अजरबैजान, आइसलैंड, सऊदी अरब, लाइबेरिया और तंजानिया में भी भारतीय मिशनों ने अभियान की शुरुआत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत विषय के साथ चलाया जा रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 3 नागरिकों की हत्या का मामला सामने आया है। एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार ग्वादर जिले के दन्नुक के कुल्दान इलाके में 3 शव मिले हैं। ये घटना प्रांत में कथित गैर न्यायिक हत्याओं और जबरन लापता किए जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच सामने आई है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांख ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से तत्काल हस्तक्षेप करने तथा बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और कथित गैर न्यायिक हत्याओं को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की है। अमरीका ने क्यूबा की निकेल खनन उद्योग और सैन्य अनुसंधान संस्थानों को निशाना बनाते हुए 8 क्यूबाई संस्थाओं और 3 सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
3: अमरीकी विदेश विभाग ने क्यूबा सरकार पर आरोप लगाया है कि वे खनिजों से होने वाली आय का इस्तेमाल आम नागरिकों के लाभ के बजाय अपने सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में कर रही है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा सरकार दशकों से देश के संसाधनों को एक सीमित और भ्रष्ट सैन्य अभिजात वर्ग के हाथों में पहुंचाती रही है। इन प्रतिबंधों के तहत नामित पक्षों की अमरीका में मौजूद या अमरीकी नागरिकों के नियंत्रण वाली संपत्ति और संपत्ति में हितों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमरीकी प्रशासन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी समेत शीर्ष ईरानी अधिकारियों का वीजा मंजूर कर दिया है। ईरान को अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होना है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच 6 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है और गतिरोध बना हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष फिर से लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी जारी है, लेकिन हाल ही में रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव पर वीटो

0: कर दिया है। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के अंतर्गत विदेशों में ईरान की संपत्तियां फ्रीज करना, हथियारों के सौदों पर रोक और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विकास पर प्रतिबंध जैसे प्रावधान शामिल हैं। यूरोपीय संघ यूक्रेन को मिसाइल और ड्रोन खरीदने के लिए 3.3 अरब यूरो की अतिरिक्त मदद देगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत के बाद ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि रूस के हमलों के बीच यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूरोपीय संघ ने अपने यूक्रेन सपोर्ट लोन के तहत पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी धनराशि मंजूर की है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1410 हो गई है, जबकि 6145 लोग अभी भी लापता हैं। प्रभावित जिलों में बचाव, राहत और पुनर्वास अभियान जारी है। सबसे अधिक मौत चितवन में हुई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को संबोधित करने की अनुमति देने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। भारत ने पिछले 2 महीनों में बांग्लादेश को लगभग 500 टन हिल्सा मछली का निर्यात किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 3 नागरिकों की हत्या की। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1410 और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वीसी प्रमोद विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। इंडिया वोट्स फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन टू अलाउ पैलेस्टीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास टू एड्रेस हाई लेवल मीटिंग ऑफ असेंबली इन न्यूयॉर्क। Army Chief General Dhiraj Seth visits Russian Land Forces headquarters as part of his 3-day official visit to Russia. India exports around 500 tons of hilsa fish to Bangladesh in the past 2 months. 3 civilians killed by Pakistani forces in Balochistan. Death toll in Nepal flood climbs to 1,410 while 6,145 people remain missing. And in men's cricket, India crushed Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win series 3-0. India has voted for a United Nations General Assembly UNGA resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address the high-level meeting of the Assembly in New York, U.S. next week via video. Earlier, the U.S. refused to give him a visa to come to New York. The resolution was passed overwhelmingly yesterday with 152 votes, while only the U.S., Israel and Paraguay voted against it, and 4 others formally abstained. U.S. Deputy Permanent Representative Tammy Bruce defended the video refusal, accusing Palestine of not giving up on terrorism. Palestine's permanent observer Riyad Mansour reiterated its commitment to Israel's right to exist in peace and security alongside Palestine. China and Russia joined him in criticizing the U.S. for not giving Abbas a visa, which they said was Washington's obligation under the agreement to host the UN. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his 3-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. The Defense Ministry said the visit reflects the

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। 10:31:07 हो चुके हैं और आपको तो पता ही है कि ये कौन सा सफर है। ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आप हमें अपने दिल के मेल हम तक भेजते हैं और आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुँचाते हैं। तरीका तो आप जानते ही हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें 9868868753 पर, यानी 9868686853 पर, या फिर ईमेल कर सकते हैं fmgold@gmail.com पर। जी हाँ, fmgold@gmail.com। बस अब नहीं बताऊंगी। हाँ, अब मैसेजेस को शामिल कर लेती हूँ। लगातार मेरे पास बरसात होनी शुरू हो जाती है, सेकंड्स भी नहीं लगते हैं और इतने सारे मैसेजेस होते हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस रह जाते हैं। तो नाराज निराश मत हुआ करिए, क्योंकि कभी ना कभी आपका नंबर भी आएगा। अब इतने सारे मैसेज होते हैं ना, जो दौड़ में सबसे आगे निकल गया, समझ लीजिए उसका नाम आ गया। हाँ, लेकिन कुछ लोग ना मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, और वह शिकायत ही करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र पुणे से सुनील सुषमा अनन्या राजवीर गायकवाड़ साहब, आपने पिछली बार मुझसे यही शिकायत की थी कि कई दिनों से आप फरमाइश भेज रहे हैं, शायद हमारे पास गाने नहीं और हम आपकी फरमाइशें नहीं बजाते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार आपका गीत बजाया।

था और आप फिर भूल गए, आज आपने फिर से वैसा ही लिखा है, तो ये सब मत करिए। हमें बहुत दुख होता है जब हम आपकी बात को सुन भी लेते हैं और पूरा भी करते हैं और उसके बाद भी आप शिकायतें, सेम शिकायत बार बार भेजते हैं। और अब आपके मैसेजेस को शामिल कर लेती हूँ। नई बस्ती गंजुंडवाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी का मैसेज। और हमें लिखा है धर्मेंद्र शिपा कपिल और ईशान पूजा परिहार ने भोपालगढ़ राजस्थान से। हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है सुरेश मालोद, वर्षा, श्रद्धा और मानसिका कोपरगांव से। और हमें ये लिखा है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन दीपांशु ने। और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा ने। साथ ही अफरोज शेख पता नेमुआ सुपौल बिहार से हमें लिख रहे हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन और पूरा परिवार हमें ऊपरकोट मोहल्ला चुखुंडी बुलंदशहर से सुन रहे हैं। आफ्ताब अफजाल, ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और कमल कुमार का हमें अफजाल मलिक के साथ कोल सिटी बरका काना से मैसेज पहुंचा है। और ये हमें लिखा है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी और पूरे परिवार ने हमें कहां से लिखा है, नवांशहर पंजाब से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी और पूरे परिवार का मध्य प्रदेश से हमें मैसेज पहुंचा। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, अग्ताप का मैसेज। शोभापुर से मेरठ कैंट से हमें लिखा है दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। रैया रोड राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी का मैसेज। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण, सोनी का, पूजा पायल और जगदीश के साथ। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका का मैसेज। मुंबई से अनुपर चात्या, शमसुल कमल, शमसुल खान, अनुराज बेनारा का मैसेज। जॉन डिकेस्ट्रो, रोज, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो का जनकपुरी सहारनपुर से। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, सीमा और पूरे परिवार का दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज हमें मिला है बड़ा बम चौक से ममता मार्कंडे, संजय और बेबी किट्टू का। और इसके साथ साथ सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग का मैसेज। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ का मैसेज। जली जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। और मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका का पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार का गांधी चौक बाड़मेर से। ये मैसेज हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, राजू, पूजा प्रांजल और पूरे परिवार का। और हाँ, आपसे ये बात कहूंगी कि ग्रीन कलर से मत लिखे, ब्लैक कलर से लिखे ताकि पढ़ना आसान हो। ये इतना लाइट होता है कि मैं आपके नामों को ठीक से पढ़ नहीं पाती हूँ। और इसके अलावा महेश अग्रवाल ने हमें लिखा है बहादुरगढ़ से। और साथ ही ये मैसेज हमें मिला है कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान का। और ये मैसेज हमारे पास भोजपुर तागा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली और वकील अहमद का। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम का हमें ओखला संगम विहार से। राजनगर गांधी चौक से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम गुप्ता का मैसेज। आसाम से हितेंद्र दास ने हमें लिखा है। और गिरधारी लाल अग्रवाल हमें धनबाद झारखंड से लिख रहे हैं। मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ तैमूर और कलीम का गंजुंडवाड़ा से मैसेज। सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया इब्राहिम का हमें कुमार हेड़ा सहारनपुर से पहुंचा। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि और पूरे परिवार का पदमा टॉकीज नेपानगर से। दीपेश, पूनम वर्मा और ज्योति शिवांश का हमें पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से मैसेज। कमल बालूजा, मधु सागर हमें लिख रहे हैं मजनू का टीला से। सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक का मैसेज। हमें लिखा है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री ने पांडर कवड़ा से। संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता का हमें नांदेड़ महाराष्ट्र से पहुंचा है मैसेज। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन उन सभी को शामिल करूंगी इस गीत के बाद, क्योंकि मैं सुनवाने जा रही हूं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो की पसंद। सहारनपुर जनकपुरी से हमें लिखा है इन्होंने। मोबी फिल्म से ये खूबसूरत गीत आपके लिए ये रहा।

0: पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। NACO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं लगातार। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस, और आपके कौन कौन से मैसेजेस अब हम तक और भी पहुंचे हैं उन्हें शामिल करते हैं। जाखौद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल और पूरे परिवार का हमें मैसेज मिला है। पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भरत कमल सानी पिंगावाला चौक गौराया जालंधर से। विवेक वर्धन, डॉक्टर पारुल मेरठ से हमें लिख रहे हैं। जनकपुरी दिल्ली से आर के गुप्ता, प्रदीप सलूजा, प्रथम संगीता का हमें मैसेज मिला है। और सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से लिख रहे हैं। शिव गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता और पूरे परिवार का हमें चाईबासा झारखंड से मैसेज पहुंचा। हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र, नोखीलाल का हमें ततरेंगी भाटापारा से मैसेज। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह का मैसेज। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज का मैसेज। उमेश ने हमें लिखा है राखी, प्रियांश, अंशिका के साथ गाजियाबाद से, और ये मैसेज हमें पहुंचा है किसका, परवेज आलम, ग्राम बलमी सिरसिया, चंपारण बिहार से लिख रहे हैं। नबी हसन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन और पूरे परिवार का मार हरा दरवाजा एटा से। महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, एडवोकेट ममता मोदी, डॉक्टर प्रियंका, तस्नीम कौशल का हमें मैसेज पहुंचा है। रामगढ़ कैंट से, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत भाटिया और मयंक का मैसेज। और साथ ही दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा, नायाब और लड्डू का हमें मैसेज पहुंचा है। श्री श्रोता रघुवीर नगर से लिख रहे हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से पिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेखर शेख और रोहित सोहित का मैसेज। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया का हमें अपार ढिंगिया के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से मैसेज पहुंचा है। और अकबर हुसैन, मोहम्मद कैफ, राबिया खातून का हमें सिवान बिहार से मैसेज मिला है। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार और डॉली बेबी का हमें मैसेज मिला है। डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा और पूरे परिवार का मैसेज। शाहदरा दिल्ली बिहारी कॉलोनी से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित तानिया का मैसेज हमें डब्बाली से मिला है, बटिंडा रोड से। और सुधाकर राजे जाधव, देशमुख, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव और पूरे परिवार का हमें जाफराबाद मराठवाड़ा से मैसेज पहुंचा है। सतीश अनेजा, विमला अनेजा का हमें चंडीगढ़ से मैसेज मिला। तुषार सिंह, संगीता कंवर, रिंकी शेखावत, दातार सिंह गोविंदपुरा सीकर से लिख रहे हैं। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण, लव्या और आरफ का एसके पप्पी के साथ हमें रोड MLB रोड ग्वालियर से मैसेज मिला। अनिल मोहन, उषा, टिल्लू, मधु का हमें पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से। शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान और पूरे परिवार का गंज डुंडवाड़ा से। उग्रसेन यादव, शकुंतला और गरिमा का हमें नई दिल्ली से मैसेज। पारुल सिंह, विवेक सिंह, वरुण, तरुण, दिशा, पूरे परिवार का हमें मैसेज मिला है। कहां से? मेरठ उत्तर प्रदेश से। और हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस पहुंच रहे।

हैं लगातार, लेकिन क्या करें, वक्त मुझे लगता है कि धीरे धीरे दौड़ रहा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहुजा का मैसेज, और हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, मेरा जहां का मैसेज पहुंचा है, कहां से, लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। ये मैसेज हमें लिखा है किसने, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान का मैसेज राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन से हमें मिला है, और हमारे पास नीलम का गुड़गांव से मैसेज पहुंचा है, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें लिख रहे हैं, और ये मैसेज हमारे पास बहुत सारे रिपीट भी पहुंच रहे हैं, सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी दिल्ली से हमें लिख रहे हैं, विपिन नेहरा ने हमें काशीपुर उत्तराखंड से लिखा है, और नमस्कार दीदी हमें पहुंच गया है लेकिन नाम भूल गए हैं शायद आप, अनिल ठाकुर, रीना ठाकुर, सराय काले खान से हमें लिख रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से मैसेज मिला है, और हमें लिखा है मास्टर खिलू परवेज बेगम, इमरान अनाज, राधा नामदेव ने लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और साथ ही बहुत सारे मैसेजेस हैं, कौन कौन है फिर से देख रही हूँ, संजय मालाकार ने हमें लिखा है, बबलू कश्यप, और बहुत सारे नाम है इसमें, और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है, चलिए बाकी के मैसेजेस को भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जल्दी से एक गीत शामिल कर लेती हूँ, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है महेश अग्रवाल ने बहादुरगढ़ से, तो ये रहा आपकी पसंद का गीत, और ये खुद्दार फिल्म से ये रहा आपके लिए।

जटोलिया, उषा जटोलिया, कृष्णा का मैसेज हमें दिल्ली नांगलोई से, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ का मैसेज, और मोदी महेंद्र मोदी मैनेजिंग, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, महेंद्र मोदी ने हमें लिखा है रामगढ़ कैंट से, और मुलापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन का मैसेज, अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, कुलदीप गांधी का मैसेज, और साथ ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पहुंच रहे हैं जो रिपीट हैं। प्लीज रिपीट मैसेजेस मत भेजिए ताकि मैं सबके नामों को शामिल कर पाऊं, आसानी से पढ़ पाऊं। और ये हमें हिमांशु कुमार का मैसेज मिला है, दिव्य स्वरा शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है, भाई इतने सारे फिर से रिपीट मैसेजेस हैं तो कैसे मैं शामिल करूं, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू का हमें तनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से मैसेज पहुंचा है, और अब संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का हमें फिर से मैसेज पहुंच गया, ये तो दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का रिंगनी छत्तीसगढ़ से, पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता का मैसेज, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का मैसेज। और अब वक्त नहीं गंवाऊंगी, जल्दी से एक और गीत सुना देती हूं आपको, और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है बता दूं, भोजपुर तागा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली और वकील अहमद का की पसंद, ये खूबसूरत गीत आप तक पहुंच रहा है, ये रहा फिल्म आबरू से।

और अब वक्त बहुत कम बचा है तो चलते चलते जल्दी से कुछ और नाम पढ़ दूं। राजकुमारी अनुज अंजलि डॉक्टर पालल अद्विका अतर सिंह का हमें मैसेज पहुंचा है, कहां से? समयपुर दिल्ली से। और

0: में ये लिखा है हिमांशु कुमार ने, कहां से नहीं पता, नजफगढ़ से शाहरुख फारूक शबनम शहनाज का मैसेज, और अब वक्त नहीं बचा है कि मैं अब और मैसेजेस को शामिल करूं, तो फिलहाल वक्त है समाचारों का, समाचारों के बाद फिर से भेंट होगी, जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरलम और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे कोच्चि में मलयालम दैनिक जन्मभूमि के एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को वे बंगलुरु में भारतीय वायुसेना को तेजस के 2 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान और हिन्दुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 बुनियादी प्रशिक्षण विमान सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
3: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। निदेशालय ने कहा है कि यह कार्रवाई बैंक की सरायकेला शाखा में बड़े पैमाने पर हुई कथित धोखाधड़ी की जांच के अंतर्गत की जा रही है। भारत ने न्यूयॉर्क में अगले सप्ताह होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा वीडियो के जरिए संबोधित करने के पक्ष में मतदान किया है। इससे पहले पिछले वर्ष अमेरिका द्वारा वीजा न मिलने पर श्री अब्बास को

0: आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद,
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
2: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
1: कभी जो सांझ की खुशबू हुआ करते थे, आज वही अजनबी सा साया लगते हैं। वक्त के तराजू में तोले गए रिश्ते अब हर मोड़ पर ठुकराते से लगते हैं। कस्मत थी जो कभी सात जन्मों की दो पल की धूप में ही पिघल गई, वो आंखें जो कहती थी सब कुछ बिना कहे, आज खामोशी के पर्दों में छिप गई।
3: फर्क अब न फासलों का कोई रहा, पास होकर भी बहुत दूर हैं हम। प्यार की चादर जो ओढ़ी थी कभी, अभी उसी आग में सुलग रहे हैं हम। बदलते मौसम ने तो बस रंग है बदले, यहाँ तो इंसानों के जज्बात बदल गए। कल तक जो जान से भी ज्यादा प्यारे थे, आज हवा के रुख के साथ बदल गए।
1: दोस्तों, आज हमारे समाज में दिलों के रिश्ते न जाने किस अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर प्यार और फिर शादी जैसे बंधन तक पहुंचने के बाद आपसे रिश्तों में ये दूरी क्यों आने लगती है? कहा जाता है कि प्यार और शादी का रिश्ता तो जन्मों जन्म का होता है,
3: मगर आज रिश्तों में जो तल्खी हम देख रहे हैं उसकी वजह क्या है, ये हमें जरूर जानना चाहिए, वरना हमारे परिवार और समाज दोनों ही इस तरह से टूट जाएंगे कि सभी के लिए ये हंसती खेलती जिंदगी एक बोझ बनकर रह जाएगी।
1: ना जाहिर हुई उनसे, ना बयां हुई हमसे, सुलझी हुई आंखों में जिंदगी कुछ यूं सिमट गई।

0: जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: रिश्तों के ताने बाने को उधेड़ते आजकल ऐसे कई किस्से हैं जो अक्सर अखबार की सुर्खियां बन जाते हैं, कि कहीं किसी लड़की को रिश्ता हो जाने के बाद भी जब उसका मंगेतर उसे पसंद नहीं आया तो उसने अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर उसका जीवन छीन लिया।
4: तो कहीं किसी पत्नी ने अपना कोई प्यार पाने के लिए अपने पति को ही दुनिया से विदा कर दिया। किसी खबर में कोई ड्रम में होता है तो किसी खबर में कोई ऊपर से गिरा दिया जाता है। और ऐसा भी है कि बहुत बार पुरुष भी किसी और लड़की के प्यार में अपना घर संसार बर्बाद कर लेता है।
3: आखिर आजकल की युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग में इतनी बेचैनी आती कहाँ से है कि वे बजाय अपनी बात को मुखर तरीके से कहने के क्राइम का रास्ता चुन लेते हैं और उसके बाद खुद के लिए जेल यात्रा और परिवार के लिए समाज में बदनामी।
4: आज की युवा पीढ़ी बात तो करती है अभिव्यक्ति की आजादी की, मगर जब बात अपनी होती है तो फिर खामोश क्यों हो जाती है? अपनी बात खुलकर कहो। अगर कोई पसंद है तो ठीक है, अगर कोई पसंद नहीं है तो नहीं है। जो रिश्ता प्यार से शुरू होता है उसे क्राइम तक ले जाना कोई समझदारी नहीं है।
3: वो वादे, वो कसमें, वो लंबी रातें सब धुएं की तरह हवा में उड़ गए। हम तो खड़े रह गए किसी मोड़ पर तन्हा, मगर रास्ते न जाने कहां मुड़ गए।

0: आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
1: आजकल ऐसे बहुत से युवा हैं जो शायद शादी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। वो ये मान लेते हैं कि बिना शादी के भी हम साथ रह जाएंगे तो परेशानी क्या है। अब इस तरह के रिश्ते शायद कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चल जाएंगे, मगर उसके बाद इनमें दूरियां और तलखी आना तो लाजमी है।
2: क्योंकि ज्यादा पाने की चाह और बिना कमिटमेंट की जिंदगी और बिना किसी जिम्मेदारी के एहसास में ये रिश्ते का चलना नामुमकिन ही होता है। आकर्षण और जरूरत से शुरू हुआ ये रिश्ता कभी कभी प्यार में भी बदल जाता है, मगर क्योंकि रिश्ते की शुरुआत ही बिना किसी प्रतिबद्धता की हुई है,
1: इसीलिए चाहते हुए भी दोनों अपनी बात एक दूसरे से नहीं कहते। निराशा, गुस्सा और फिर क्या हो जाता है या हो सकता है, इसकी खबर बनते देर नहीं लगती। युवाओं का कैरियर, उनकी जिंदगी, उनके सपने और उनका परिवार सब खत्म हो जाता है।
2: प्यार करना या प्यार हो जाना कोई बुरा नहीं है, मगर अपने साथी पर भरोसा करो, उसकी जरूरत को समझो, तभी रिश्ते संभलेंगे और प्यार भी। वरना ये भी जान लो कि ये मोहब्बत है, इसने ना जाने कितनों को बना दिया है और ना जाने कितनों का बैंड बजा दिया है।
1: कुसूर दोनों का होता है इन रिश्तों में। चलो एक पहल तुम करो, एक कदम हम बढ़ा।

0: सारा दिन बस नाश्ता, लंच और डिनर। सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इसे सुन रहे हैं। 11:25:44 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और ये सफर है तस्वीर का, जिसमें हम आपको किसी न किसी खूबसूरत जगह की सैर पर जरूर लेकर चलते हैं। आज कहां ले चल रहे हैं जरूर बताती हूं। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पर्वतीय परिदृश्य में बसा जीरो, जी हाँ जीरो घाटी उत्तर पूर्वी भारत का एक मनमोहक पर्यटन स्थल है, जो अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्राकृतिक सौंदर्य से सभी को मोहित कर लेता है। यहाँ पहले धान के खेत, शांत गांव और हरी भरी पहाड़ियाँ जीवंत वनस्पतियों से ढकी हैं। इस छोटे से शांत शहर की शांति इसे आध्यात्मिक शांति चाहने वालों के लिए स्वर्ग बनाती है। वहीं इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता अनगिनत प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षण का केंद्र है, जो खास तौर से दूर दूर से यहाँ की अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता में डूबने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। ये जगह रोमांच के शौकीनों के लिए भी बेहतरीन है। चाहे आप मनमोहक ट्रैकिंग का अनुभव करना चाहते हो, जंगल में कैंपिंग का मजा लेना चाहते हो, या वन्यजीवों की खोज करना चाहते हो, जीरो किसी को निराश नहीं करता। तो भाई आज आप और हम साथ साथ निकलेंगे जीरो की यात्रा पर, और क्या है यहाँ पर देखने के लिए जरूर बताऊंगी मैं आपको। गीतों के इस सफर में साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक सेला सुरंग है जो कि 9 फरवरी 2019 को सुरंग का शिलान्यास समारोह प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और इस निर्माण वर्षों के दौरान लगभग 650 कर्मचारी और मजदूर दैनिक आधार पर लगे थे और इस सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग को पूरा करने के लिए लगभग 71,000 मीट्रिक टन सीमेंट, 5,000 मीट्रिक टन स्टील और 800 मीट्रिक टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 से रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ और समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग तवांग तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग देती है। पहले यात्रियों और भारतीय सैनिकों के लिए तवांग तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, खासकर कठिन सर्दियों के महीनों के दौरान जब ये बर्फ से ढका होता था। सेला सुरंग के खुलने से तवांग के लिए एक और मार्ग मिल जाता है जिससे यात्रियों के लिए सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद मार्ग के साथ साल भर पहुंच का आनंद लेना आसान हो जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में जल्द से जल्द प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार सुरंगें, अग्निशमन उपकरण और जेट फैन वेंटिलेशन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सजी हैं। वाहनों की आवाजाही का वास्तविक समय डेटा प्रदान करने और परेशानी मुक्त संचालन की सुविधा के लिए SCADA आधारित निगरानी उपकरण भी सुरंगों के अंदर रखे गए हैं। दोनों सुरंग, एकल ट्यूब और सुरंग दो जो कि दो ट्यूब वाली सुरंग है, ये 980 मीटर और 1555 मीटर के आसपास तक फैली हुई हैं और खास उद्देश्यों को ये नामित की गई हैं। एक आपातकालीन सेवाओं और रसद के परिवहन के लिए और दूसरी नियमित

यातायात के लिए। इसके अलावा सुरंग के प्रवेश द्वारों पर वाहन की आवाजाही को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने, निर्बाध और सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए 1200 मीटर की कनेक्टिंग जो रोड है वो बनाई गई है। सेला सुरंग की बात करूं तो ये रणनीतिक स्थान और इसका खास महत्व भी है। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सेला टनल को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और इसे खास रूप से एलएसी के पूर्वी क्षेत्र में चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड से संभावित खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी। असम के तेजपुर में भारतीय सेना की आईवी कोर अब सेला सुरंग के जरिए एक घंटे के अंदर तवांग पहुंच सकेगी। इसके अलावा बोमडिला और तवांग से यात्रा 171 किलोमीटर लंबी सड़क के जरिए साल के किसी भी समय संभव है। मौसम की परवाह किए बिना यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई नई पूर्ण सुरंगें सेला दर्रे की तुलना में बेहतर और अधिक सीधा रास्ता प्रदान करती हैं, जो 4200 मीटर की ऊंचाई पर है। सेला सुरंग जो है, अगर मैं इसकी बात आपको कहूं कि मैं क्यों कर रही हूं, तो भाई जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में ऐतिहासिक सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था। इसकी ऊंचाई और रिकॉर्ड की बात करें, 13000 फीट की से अधिक की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन यानी डबल लेन सड़क सुरंग है ये। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम का मिंग जिले में स्थित ये सुरंग असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर मौसम में यानी ऑल वेदर कनेक्टिविटी से जोड़े रखती है। पहले सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से ये रास्ता जो है वो 4-5 महीने तक बंद रहता था, लेकिन अब चीन सीमा जो एलएसी है उसके पास भारतीय सेना और हथियारों की आवाजाही साल के 365 दिन आसान हो गई है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा परियोजना वर्तक के तहत लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से किया गया और इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है, जिसमें दो सुरंगें हैं और एक संपर्क मार्ग भी शामिल है। अगर इन शॉर्ट कहूं तो सेवा संकल्प अभियान के तहत देश के सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास और सुरक्षा को मजबूत करने वाले जिन अभूतपूर्व कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है उनमें सेला सुरंग भी एक मील का पत्थर है। और अब क्योंकि हम सेवा संकल्प अभियान के साथ जुड़ रहे हैं तो फिर इस सुरंग की बात करना तो एकदम जायज बनता है ना। तो आज हम जहां पर निकले हैं वो अरुणाचल प्रदेश का जीरो है और जीरो की यात्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर देखने के लिए क्या क्या है ये आपको जरूर बता दूं। तारन मछली फार्म है कि यहां पर जहां आप जा सकते हैं, खेत और बागान है यहां। बुला गांव में स्थित तारन मछली फार्म अपातानी जनजातियों द्वारा बसे जीरो शहर का एक प्रमुख आकर्षण है और ये फार्म अपातानी जनजाति की पारंपरिक कृषि पद्धति को प्रदर्शित करते हुए एक अनूठा नजारा पेश करता है। यहां पर आपको चावल की दो किस्मों के साथ साथ मछली की भी एक किस्म की प्रजाति की खेती यहां पर देखने को मिलेगी। आप चाहे तो सीखे झील जा सकते हैं जो शहर के केंद्र से 4 किलोमीटर दूर है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी में हापोली कस्बे से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित सीखे झील राज्य की पहली और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सरकार द्वारा आपातानी समुदाय के सहयोग से जल संरक्षण परियोजना के रूप में विकसित की गई ये झील पिकनिक, बोटिंग और बाकी मनोरंजक गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय जगह मानी जाती है। आप चाहे तो जीरो संगीत महोत्सव में जुड़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी घाटियों में आयोजित होने वाला जीरो संगीत महोत्सव भारत के स्वतंत्र कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाला एक आउटडोर संगीत समारोह है और ये महोत्सव भारत की सबसे महत्वपूर्ण संगीत प्रतिभाओं और विविध दर्शकों को एक साथ लेकर आता है। जीरो संगीत महोत्सव जीवंत संस्कृति, संगीत और कला का संगम है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जीरो में आप टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख सकते हैं, जो परिवार के साथ सैर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। शहर के केंद्र से 16 किलोमीटर की दूरी पर है ये। भारत के अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी हरियाली में बसा टेली वैली वन्य जीव अभयारण्य जैव विविधता का एक अनूठा अनुभव देता है और एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। 337 वर्ग किलोमीटर में फैला ये अभयारण्य मिशमी, ताकिन, क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा और हिमालयन ब्लैक बेयर जैसी कई स्थानीय और लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। आप चाहें तो और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां जा सकते हैं जीरो में, बताऊंगी जरूर, लेकिन इस गीत के बाद।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: वेलकम बैक। 11:44 बहुत कम समय बचा है और बहुत सारी बातें हैं, तो जल्दी से पहले एक और खास बात आपको बता दूं कि आज है फ्राइडे यानी शुक्रवार। 5:10 पर शाम को वक्त रहता है पानी पर लिखी कहानी का, याद है ना आपको। और आज की जो कहानी है वो है अंग वस्त्र। जरूर सुनिएगा इस कहानी को, आपको जरूर पसंद आएगी।

से लिखा है नीलम कुमार ने। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती जी की। जरूर सुनिएगा पानी पर लिखी कहानी शाम 5:10 पर। और मैं आपको बता रही थी कि जीरो में क्या क्या है घूमने के लिए, तो जल्दी से बता दूं। मेघना गुफा मंदिर है यहाँ पर, जो कि 5000 वर्ष पुराना है और इसकी खोज 1962 में हुई थी, जिसके बाद दूर दूर से यात्री यहाँ इस पवित्र जगह को देखने के लिए, यहाँ की यात्रा करने के लिए आते हैं। भगवान शिव के 28वें अवतार भगवान लकुलिशा को समर्पित ये प्राचीन मंदिर संस्कृत ग्रंथों की विस्तृत नक्काशी और अद्भुत वास्तुकला से सजा है, तो आध्यात्मिक आभा से यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आपको यहाँ भी जरूर जाना चाहिए। श्री सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है यहाँ का शिवलिंग है, जो कि देखने लायक है। शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अरुणाचल प्रदेश के सुरम में जीरो घाटी में स्थित शिवलिंग एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है। प्राकृतिक रूप से बना ये शिवलिंग संरचना जो है वो स्फटिक की प्राकृतिक माला से सुशोभित है और इसकी लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 22 फीट है और समुद्र तल से ये 5754 फीट की ऊंचाई पर बसा है और एक आकर्षक शहर है, जहां से आसपास के अपाटा के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। आपको यहां भी जरूर जाना चाहिए। डोलो मांडो में ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। आप चाहें तो जीरो घाटी के सुरम्य पुराने शहर हिजा में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित डोलो मांडो रोमांच पसंद करने वालों और प्रकृति प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र है और नीचे फैली जीरो घाटी का मनमोहक नजारा आप यहां से देख सकते हैं। हरे भरे धान के खेतों और घुमावदार नदियों से सजी ये ट्रैकिंग डेस्टिनेशन प्रकृति की गोद में एक शांत पलायन का आपको वादा देती है। लगभग 2-3 घंटे आपको लगते हैं इस यात्रा में, तो जरूर आपको ये भी करना चाहिए। पाइन ग्रोव्स में आप जा सकते हैं, जिसे प्यार से म्योलियांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पुराने जीरो शहर में महज 3 किलोमीटर की दूरी पर रमणीय स्थल है ये भी आपको जरूर देखना चाहिए और यहां पर भी आपको देवदार के पेड़ों से सजा हुआ बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी अगर आप शौक रखते हैं तो फिर आपको यहां जरूर जाना चाहिए। मिडे में ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, ये भी एक जगह है जहां पर आपको जीरो घाटी में स्थित मिडे में देवदार के पेड़ और मनमोहक नजारे देखने को मिलेंगे। ट्रैकिंग का मजा यहां पर काफी खूबसूरत रहता है और हालांकि यहां का जो रास्ता है माध्यम सिर्फ ट्रैकिंग ही है, इससे आप यहां पर पहुंच सकते हैं ऊबड़ खाबड़ भूभाग और लुभावने नजारे प्रकृति की शांत सुंदरता में आपको सचमुच डुबो देंगे। टिपी आर्किड अनुसंधान केंद्र है, ये भी आप देख सकते हैं और ये आर्किड के संरक्षण और अध्ययन के लिए समर्पित है। लगभग 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है, इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। आर्किड संग्रहालय है ये, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, हर्बेरियम और ग्रीन हाउस है यहाँ पर। लगभग 1000 आर्किड प्रजातियों को गमलों में लटकती टोकरियों में प्रदर्शित किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, जरूर देखिएगा। और भी कुछ बताऊंगी जरूर अगर समय बचा तो, लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए।

भैया, अगर आप जीरो जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो सितंबर से के अंत से नवंबर के मध्य तक का समय है। और अगर आप फूलों और कम भीड़भाड़ वाले माहौल के लिए जाना चाहते हैं तो मार्च से मई मिड तक आप जा सकते हैं। यात्रा के जोखिम के बावजूद एकांत और हरे भरे नज़ारे अगर आप लेना चाहते हैं तो मानसून जून से अगस्त तक, और मनमोहक शीतकालीन नज़ारों और शांत प्रवास के लिए आप दिसंबर से फरवरी का महीना चुन सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि यहां पर पहुंचना कैसे है तो आपको बता दूं कि जीरो वैली पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हवाई मार्ग से असम का लीलाबाड़ी हवाई अड्डा सबसे नजदीक है। दूसरा ऑप्शन जोरहाट हवाई अड्डा है। इसके अलावा गुवाहाटी या तेजपुर तक उड़ान भरें या फिर सड़क मार्ग से आप यहां जा सकते हैं। बाय ट्रेन अगर आप चाहें तो नाहरलागुन निकटतम रेलवे स्टेशन है जो जीरो से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। नाहरलागुन के लिए गुवाहाटी और दिल्ली से ट्रेन मिल जाती है। गुवाहाटी यहां से अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो गुवाहाटी पहुंच जाइए, यहां से 470 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से रात भर बसें आपको मिल सकती हैं। ईटानगर या नाहरलागुन से लगभग 105 किलोमीटर की ड्राइव पर जीरो है। और अगर आप चाहें तो टैक्सी ले सकते हैं नाहरलागुन उत्तर लखीमपुर या जोरहाट से। निजी टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी या बस से आसानी से आप पहुंच सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी की जरूरत होती है, जो ऑनलाइन या संबंधित सरकारी कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। और साल भर सुहावना मौसम रहता है, सितंबर में क्योंकि जीरो फेस्टिवल होता है तो इस समय जाना यहां पर ज्यादा अच्छा है अगर आप पहुंच सकें तो। अब खाने की बात करूं तो यहां पर बैम्बू चिकन पिका पिला जो कि बांस के अंकुर और स्थानीय मिर्च से बना हुआ एक अचार होता है, स्मोक्ड मीट, थुकपा या फिर चूरा सब्जी, अपतानी व्यंजन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको जरूर यहां पर टेस्ट करना चाहिए जो यहां के लोकल स्वाद को आप तक पहुंचाएगा। और अगर मैं बात करूं शाकाहारी ऑप्शंस की तो मिक्स वेजिटेबल, टैपियो या फिर स्थानीय होम स्टेज में घर का बना ताजा जैविक खाना आपको आराम से मिल सकता है, तो आप इसका अनुभव भी यहां पर ले सकते हैं। और एक अगर मैं बात करूं त्योहारों की तो यहां पर ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है कि जो कि जुलाई में अच्छी फसल के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और म्योको जो वसंत ऋतु में यहाँ के प्रमुख उत्सवों में से एक है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ की संस्कृति में धान की खेती के लिए खास तौर पर इस जगह को जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर परंपराओं में बुजुर्ग अपातानी महिलाएं नाक के बड़े नचने वाले प्लग, नाक के प्लग जिसको कहते हैं, और चेहरे पर टैटू गुदवाती हैं जो अब काफी लुप्त प्राय हो चुका है।

बेत और बांस के सुंदर शिल्प और हाथ से बुने हुए पारंपरिक कपड़े भी यहाँ पर पहने जाते हैं। हालांकि ये अब उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये एक पारंपरिक परिधान है। और इसके अलावा अपातानी लोग बिना हल के ही धान और मछली की खेती एक साथ करते हैं, जो उनके उच्च पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान को दर्शाता है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल हो, बेत बांस का शिल्प, म्योको जैसे त्योहार, चेहरे पर टैटू, बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए यहाँ की संस्कृति में। तो जरूर चाहिए जब भी आपको मौका मिले जीरो की यात्रा पर। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो जल्दी से एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा देती हूँ, और उसके बाद आगे क्या है जरूर बताऊंगी सफर में।

और अब वक्त तो नहीं बचा है, दामन छुड़ाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे चलना होगा, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर किसी रोज किसी और सफर में आपसे मुलाकात जरूर होगी। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और ऐसे ही आपके पसंदीदा चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल वक्त है समाचारों का।

0: הקלטה. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डियल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HJT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा।

किसी ने सच कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमें FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सुबह के बाद रात आती है तो रात के बाद फिर से नया सवेरा आता है। इसीलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, हर हाल में मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा संगीत सुनते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म थी अग्नि परीक्षा और गाया था लता मंगेशकर ने। और दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि आज है शुक्रवार यानी फ्राइडे और आज के दिन हमारा विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। खास तौर पर हम विशेष कार्यक्रम लेकर आपके लिए ही उपस्थित होते हैं। अब ये बात की है तो बुजुर्गों के आज कार्यक्रम हम आपको जरूर सुनवाएंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन की खास बात करते हैं। एक दिन और है आज का, वो है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, यानी कि एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ नौकरी और वेतन से जुड़ा नहीं बल्कि बराबरी, सम्मान और न्याय से जुड़ा है, वो है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। इस दिन का उद्देश्य है लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि समान काम करने वाले के लिए यानी समान वेतन मिलना हर व्यक्ति का अधिकार है। सोचिए अगर दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां और योग्यता समान है, तो केवल उनके महिला या पुरुष होने के कारण उनके वेतन में अंतर क्यों हो। समान वेतन का मतलब केवल पैसे की बराबरी नहीं, ये उस सोच को बदलने की बात है जिसमें किसी व्यक्ति की मेहनत और प्रतिभा को अपने यानी उनके जेंडर के आधार पर कम या ज्यादा आंका जाता है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, प्रशासन, मीडिया, बिजनेस और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे जिम्मेदारियां निभा रही हैं, नए मुकाम हासिल कर रही हैं और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसे में उनकी मेहनत का समान मूल्य और समान सम्मान मिलना बेहद जरूरी है। हमें अपने कार्यस्थलों पर समान यानी कि अवसर को बढ़ावा देना चाहिए और साथ में अगर हम कहीं वेतन में असमानता देखते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने और सही बदलाव की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब मेहनत बराबर हो तो मूल्यांकन भी बराबर होना चाहिए और सम्मान भी। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस यानी कि समान वेतन दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने आसपास समान अवसर, समान मेहताना और समान यानी कि साथ में सम्मान की सोच को मजबूत करेंगे। तो याद रखिए बराबरी किसी एक की जीत नहीं बल्कि पूरे समाज की तरक्की है।

एक कदम बुजुर्गों की ओर हमारा विशेष कार्यक्रम। अब बात करते हैं कुछ बुजुर्गों से संबंधित, यानी कि बुजुर्गों से माफी और आशीर्वाद दोनों जरूरी है। कहते हैं घर में बुजुर्ग हो तो वो घर सिर्फ घर नहीं रहता बल्कि अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद का खजाना बन जाता है। हमारी जिंदगी में जाने अनजाने कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे हमारे माता पिता, दादा दादी या परिवार के बड़े हमसे नाराज हो जाते हैं। कभी हमारी बात का लहजा गलत हो जाता है, कभी हम उनकी किसी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और कभी व्यवस्था के कारण उन्हें समय नहीं दे पाते। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि छोटी सी माफ कर दीजिए कितनी बड़ी दूरी को खत्म कर सकती है ये बात? बुजुर्गों से माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों की कद्र करना है। उनके सामने सिर झुकाकर माफी मांगने से हमारा सम्मान कम नहीं होता बल्कि रिश्ते और मजबूत होते हैं, और माफी के साथ साथ उनका आशीर्वाद लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद सिर्फ खुशी नहीं देता बल्कि जीवन के मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, घर में जो बड़े हैं उनके पास बैठिए, उनका हाल पूछिए। अगर कभी जाने अनजाने आपका दिल दुखा हो, यानी कि तो दिल से कहिए मुझे माफ कर दीजिए और फिर प्यार से उनके चरण स्पर्श कहिए और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए ये कहिए। और खास तौर पर यकीन मानिए उस पल की खुशी किसी महंगे तोहफे से कहीं ज्यादा अनमोल होगी, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी माफी सुकून देती है और आशीर्वाद जिंदगी सवार देता है। बुजुर्गों की क्षमा में भी हमारी मुक्ति है और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

0: दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आपका स्वागत है, आपके विचारों का और आपकी पसंद का। आपके सुझाव आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। और दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि जब बात हो रही है एक कदम बुजुर्गों की ओर की, तो उम्र बढ़ती है, रिश्तों की जरूरत नहीं घटती। बुजुर्ग हमारे घर की जड़ हैं, उन्हें समय और सम्मान दें। उनकी मुस्कान से हमारे संस्कारों की खूबसूरती है। एक कदम उनकी ओर बढ़ाएं, अपनापन उनके दिल तक पहुंचाएं। आइए बुजुर्गों का हाथ थामें और उन्हें एहसास दिलाएं कि है वो हमारे लिए कितने खास हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी प्यासा सावन। और अब बात करते हैं कुछ टूटते परिवार और हमारे बुजुर्गों की। आज परिवारों में वो रिश्ते हैं, लेकिन कई बार साथ होने का एहसास कम होता जा रहा है। व्यस्त जिंदगी, आपसी मतभेद, बदलती सोच के कारण संयुक्त परिवार टूटकर छोटे छोटे परिवारों में बंट रहे हैं। इस बदलाव का सबसे गहरा असर हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है। जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए लगा दी, वहीं उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर वे अकेले रह जाते हैं, जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनेपन और साथ की जरूरत होती है। बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ है, उनके पास अनुभव है, जीवन की समझ है, रिश्तों की जोड़ कर रखने की क्षमता है। उनकी कही हुई छोटी सी बात भी कई बार हमें बड़ी मुश्किल से में बचा सकती है। यानी कि उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें करना, उनकी पुरानी यादें सुनना, बस उनका हाल पूछ लेना, इन छोटी छोटी चीजों से उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आ सकती है। परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें हर पीढ़ी के लिए सम्मान और जगह हो। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी जरूरतों को समझें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि परिवार की सबसे अनमोल धरोहर है। आइए टूटते परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करें। शुरुआत करें अपने घर से, अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर उन्हें सम्मान और प्यार दें जिसके वे सच में हकदार हैं। आइए सुने लम्हे फिल्म से गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

और अब बात करते हैं जब मोबाइल बड़ा हो गया और बुजुर्ग छोटे। आप कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर, विशेष कार्यक्रम आज हमारा आप सुन रहे हैं। तो अब ये कहना है कि एक समय था जब घर में सबसे बड़ी कुर्सी दादाजी की होती थी, सब उनसे पूछकर फैसला लेते थे। आज घर में सबसे बड़ी स्क्रीन मोबाइल की है और सबसे अकेली कुर्सी फिर भी दादाजी की ही है, क्योंकि हम सब एक ही घर में हैं, अलग अलग दुनिया में। ऐसा लगता है कि पोता रील देख रहा है, बेटा लैपटॉप पर है और दादी दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही है कि कोई उनसे दो बात कर ले। हम कहते हैं

बुजुर्ग टेक्नोलॉजी नहीं समझते, सच ये है हमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। क्या हमने कभी 10 मिनट निकालकर अपने पिता को वीडियो कॉल करना सिखाया? क्या माँ को सिखाया कि यूट्यूब पर भजन कैसे सुनते हैं? उन्हें डिजिटल दुनिया में अकेला मत छोड़िए, उन्हें व्हाट्सएप पर फोटो भेजिए, उन्हें फ़ोन मिलाना सिखाइए। जब वो आपके दोस्त से वीडियो कॉल करेंगे तो उनकी आंखों में जो चमक आएगी वो किसी भी लाइक से सबसे बड़ी होगी। तो मोबाइल से जुड़ने के लिए बना था, यानी कि दूरी के लिए नहीं। तो आज से एक नियम बनाइए, रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के और सिर्फ बुजुर्गों के नाम।

और अब बात करते हैं कुछ यानी कि दवा से ज्यादा दुआ, सेहत और सम्मान की। हम सोचते हैं बुजुर्गों को सबसे अच्छी दवा चाहिए, सबसे बड़ा अस्पताल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर उससे भी पहले उन्हें कुछ और भी चाहिए। उन्हें समय पर खाना चाहिए, रोज 20 मिनट की सैर चाहिए और प्यार भरी बातें चाहिए। हमारे पिताजी के घुटनों में दर्द है, हम दर्द की दवा ला देते हैं, पर क्या हमने कभी उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए ले जाने के लिए जिद की? क्या सुबह उनके साथ सैर पर गए हम सब? नहीं, बुजुर्गों की सेहत सिर्फ शरीर की नहीं, सम्मान की भी है। जब हम उन्हें अरे आपसे नहीं होगा कहकर रोक देते हैं तो उनका मन सबसे ज्यादा दुखता है। उन्हें छोटा बच्चा मत समझिए, उन्हें सहारा दीजिए, बेसहारा मत बनाइए। हाथ पकड़कर चलाइए, हाथ पकड़कर बिठाइए मत, एक कदम बुजुर्गों

के लिए जिद की। क्या सुबह उनके साथ सैर पर गए हम सब? नहीं, बुजुर्गों की सेहत सिर्फ शरीर की नहीं सम्मान की भी है। जब हम उन्हें अरे आपसे नहीं होगा कहकर रोक देते हैं तो उनका मन सबसे ज्यादा दुखता है। उन्हें छोटा बच्चा मत समझिए, उन्हें सहारा दीजिए, बेसहारा मत बनाइए। हाथ पकड़कर चलाइए, हाथ पकड़कर बिठाइए मत। एक कदम बुजुर्गों की ओर का मतलब है उनकी दवा का टाइम याद रखना, उनके चश्मे को साफ कर देना, उनके जूतों में कील अगर कोई है तो वो भी देखकर निकाल देना। तो याद रखिए, दवा शरीर ठीक करती है पर दुआ और सम्मान आत्मा को ठीक करता है। और बुजुर्गों की दुआ में सबसे बड़ी कोई दवा नहीं, यानी कि उनकी दुआओं में भी हमारी ही जिंदगी बसी हुई है।

के बड़े बुजुर्ग होते हैं, यानी हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है। उन्होंने ही तो सिखाया है प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गीत फिल्म है।

और अब बात करते हैं जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं, वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों में साथ खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं, वे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ढाल बन के खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब रिश्ते होते हैं, और वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब खुश होते हैं, और वो घर

दोस्तों बात करते हैं कुछ स्वच्छता की। जी हाँ, जब हवा की बात हो रही है तो जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य और खुशहाली अपने आप चली आती है। स्वच्छता सिर्फ हमारे घर की सफाई तक सीमित नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण, हमारी गलियों, सड़कों, नदियों, पूरे देश की जिम्मेदारी है। हमारा भारत तभी स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है जब हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करें और छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत करती हैं।

और अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की

0: लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धोंगियाल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एचटीटी 40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और चार ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। एचटीटी 40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 74,547 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,336 पर था। 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ कल से जापान के आइचे नागोया में हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jayashankar and his Bhutanese counterpart Leon Po D.N. Dhungyel reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These

का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त ठीक 10:11 हुए हैं और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल के सफर को तय करते हुए आज बातें होंगी मशहूर अदाकारा शबाना आजमी की, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने हर तरह के रोल और सांचे में अपने आप को ढाल लिया, अपनी अभिनय प्रतिभा को बखूबी दर्शाया। बहुत सारी बातें होंगी इनकी फिल्मों की और इनके करियर से जुड़ी। सुनते रहें आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

सुन रहे हैं आप 100.1 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और जिक्र हो रहा है शबाना आजमी का। मशहूर अभिनेत्री होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहीं और मशहूर शायर और कवि कैफी आजमी और इंडियन थिएटर की मशहूर आर्टिस्ट शौकत आजमी की प्रतिभाशाली सुपुत्री शबाना आजमी हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक संगीतकार जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी। उनके कार्यों की अदाकारी की उनकी परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने आपने भी अगर उनकी फिल्में देखी हैं तो उनकी प्रतिभा के कायल तो आप भी जरूर हुए ही होंगे।

जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी साइकोलॉजी से स्नातक रही। शबाना आजमी की पढ़ाई मुंबई से ही हुई, उसके बाद उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से। उनके करियर की शुरुआत हुई श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से और 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। उनकी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद सन 1983 से लेकर 1985 तक लगातार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार उनके नाम रहा। अर्थ, खंडहर और पार जैसी उनकी ये बेहतरीन फिल्में रहीं इन सालों में।

आकाशवाणी गोल 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए बातें हो रही है जानी मानी प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी की, जिन्होंने आर्ट और कमर्शियल दोनों ही तरह की फिल्मों में अपनी अदाकारी, अपनी प्रतिभा, अपने हुनर, फन का डंका बजवाया।

शुरुआती दौर में जब वो आर्ट मूवीज यानी कि कलात्मक फिल्मों में अभिनय कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने अपने आप को ग्लैमरस इमेज से दूर रखा और अपनी बहुत सारी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। अर्थ, निशांत, अंक

ठाकुर, स्पर्श स्वामी, मासूम मंडी, नमकीन, पेस्टन जी जैसी फिल्मों में उनकी उत्कृष्ट अदायगी नजर आती है। उनके अभिनय की बारीकियों और ऊंचाइयों की जितनी बात और तारीफ की जाए कम है। बस ऐसी अदायगी और अभिनय क्षमता है शबाना आजमी में।

0: का बैगुन परा।
1: हाँ।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है।
1: कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक फिल्मों से भी उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ। अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मैं आजाद हूं, लहू के दो रंग, थोड़ी सी बेवफाई, अवतार, टूटे खिलौने, देवता, स्वर्ग नर्क जैसी फिल्मों में भी उनकी यादगार अदाकारी हमें देखने को मिलती है। इन फिल्मों में भी वो किसी से कमतर नजर नहीं आती। उनके अभिनय में तरह तरह के रंग ही उनकी एक्टिंग की खासियत रही है। प्रयोगात्मक सिनेमा के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, या कहें कि डेयरिंग अभिनय। फायर जैसी विवादास्पद फिल्म में उन्होंने बेधड़क अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रमाण

किया। वहीं बाल फिल्म मकड़ी में एक चुड़ैल की भूमिका भी उन्होंने बखूबी निभाई। उनकी कलाकारी ऊंचाई और गहराई दोनों का ताना बाना रही। मासूम में मातृत्व की कोमल भावनाओं को उन्होंने जीवंत किया, तो वहीं गॉड मदर में प्रभावशाली महिला डॉन की भूमिका निभाकर लोगों को दांतों तले उंगलियां उन्होंने चबवाई।

एफ 97.2 मीटर यानी 1500 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आशिक संवाद 1947 भाद्रपद माह की सातवीं तिथि तदनुसार सन 2026 सितंबर महीने की दिनांक 18 और दिन है शुक्रवार। श्रोताओं, अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित की जाने वाले सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्री संगे बोम्पा शिरदेपा, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिंग तको और श्री लामसरिंग, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गरे, मोनपा में उद्घोषक श्री संगेटाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कार्मो। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे केंद्र से आज के तमाम कार्यक्रम आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मिड डे न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त LCA तेजस, HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। X@AIR News हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व

0: मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
3: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
4: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
5: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत

0: परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
2: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि यह संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की योना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC-Tejas और ST-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रूपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। मीडियम में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। डीजे पेश है कार्यक्रम वंदना। इसमें पहले आप सुनिए गांधी स्मृति। गांधी स्मृति में आज आप सुनिए देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी का विचार और उसका मनपसंद भजन।

0: गांधी स्मृति। हरिजनों पर अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना। किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापू जी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ। तो वो तो हमारी शरण के लिए है। रोहतक में और तो जिला में कहो तो वहाँ हरिजन तो हर जगह पे पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन रहते हैं। मैंने देखा ऐसा तो वहाँ तो जाट लोग पड़े हैं, शायद अहिर लोग भी पड़े हैं, तो उसी जगह पे रहते हैं। तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है तो हरिजन वो तो हमारे गुलाम है, तो उनके पास से तो जो कुछ काम लेना है हम लेंगे। और पीछे वहां पर देखो हक की बाटा लड़े, हक से लेंगे, देखो वो तो हरिजन है ना, तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, न दे तो प्यासे रहे। खाना चाहिए हम दे तो खाए और नहीं तो भूखा रहे। और दंगा या दे तो हम दे तो ठीक है और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसको तो मैं तकबर ही मानता हूँ। तो अंग्रेजी सत्ता चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है। तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है, उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हमको तो अभी गुलामी में रहना चाहिए कि हम मर जाएं, कि वहां से रोहतक जिला को छोड़ दें, क्या करें। अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये एक समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको कि जाते हैं कहाँ, रहते हैं कि नहीं, और ऐसा काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल तब पीछे इसी बात पर रहना चाहते उसका काम बिगड़ जाता है और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है। लेकिन हरिजन को तो गुलामी ही करना है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए वो तो बेचारे वो मजलिसा में पढ़ते हैं।

कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा थोड़ा सा बड़े बड़े लेकिन पढ़ते हैं और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं। मैंने तो उनकी बात हुई, लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उन्हीं का क्या कहें। तो मैंने आपको ख्रिस्तियों को तो कहा, अब भी हरिजनों पर, अभी तो ऐसा हो गया ना, अच्छा अंग्रेजी सत्ता चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे, हम सबको दंड दे सकते हैं। और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को ही दया देंगे, जज हमको क्या करने वाला था। ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है उनको तबाह होते हैं। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है उसमें आपको मैं हरिजनों की तो करोड़ों कथा वो सुनाऊंगा कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म पड़ा है, कर्म पड़ा है, कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं, गुलाम जैसे मानते आए हैं, उनको हमने बड़ी बड़ा अधर्म किया, गलती की, पाप किया, उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है। प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं, बहुत किया भी है, लेकिन सब हिंदू नहीं किया है, करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है। तो जितने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपना नहीं लिए है, तो मुझको ये कर्म कथा आपको सुनानी भी क्यों पड़े। तो जब तक हम ऐसा करते रहे और अभी करें, अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे, हाँ वही ऐसे है, नहीं तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए हैं कि हम तो बुरे हुए हैं। तो हमको समझना चाहिए कि उन पर हमारे ऐसे जुलम नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में, उससे ज्यादा उसका सबब ये है क्योंकि हमारे दिल में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है। तो अभी मानो ख्रिस्तियों को क्योंकि पहले से करो साफ तो पीछे हम नहीं, तो पीछे हम जाके जाति स्थान बनाएंगे, आहिर स्थान बनाएंगे और पीछे हर एक अपना बनाएगा, हिंदुस्तान का कोई नहीं बनाएगा। ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं। इसलिए मैं कहूंगा बार बार कि हमारे हरिजनों को तो अपनाना ही चाहिए, वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है, वो कोई पंचम जाति है, पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है, चार वर्ण है सही, तो चार वर्ण का भी अर्थ ये तो है नहीं मेरी निगाह में, एक ऊंचा और दूसरा नीचा, लेकिन चार में सब जितने पेशे हो सकते हैं, तो एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना, दूसरा का है कि धर्म की रक्षा करना और तीसरा का काम है कि तिजारत करना। तो अपना पेट भर, अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ों रुपया पैदा करने के लिए नहीं, अपने लिए, लेकिन करोड़ों पैदा करें और शुद्ध कोली हो और वो सब प्रजा के लिए है। और पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहे तो शूट है तो वो सेवा करें, लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं, साथ साथ बेच सकते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो शूट है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है, तो भी उसको तो सूर्य का ही मन सेवा का ही काम करना है, सब सेवा है। जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, तो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, झाड़ू निकालता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है, चारों सेवा है, लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है उसके लिए वो बनाया। उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब भी नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा, ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है, उसको भूल गए, उसका अनर्थ कर लिया, पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की और उसको पीछे पंचम भाव पैदा किया, तो वो तो सब हमारी गलती है, हमारी दुष्टता कहो तो वो है, हमारे हम धर्मों से हट गई इसलिए हमने किया। तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई है तो हम हिंदू हम सिख सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले, तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी स्मृति। गांधी स्मृति में आज आपने सुना देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी का विचार और उनका मनपसंद भजन। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम

में आज आप सुनिए हरिहरन, सुरेश वाटकर, कविता कृष्णमूर्ति, नितिन मुकेश और साथियों से हिंदी भक्ति गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हरिहरन, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, नितिन मुकेश और साथियों से हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। डीजी श्रोताओ, अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए चंद मणिपुरी आधुनिक गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद मणिपुरी आधुनिक गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

0: श्रोताओं, इसी मणिपुरी आधुनिक गीतों के साथ ही विभिन्न प्रांतों की गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यही पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। डीजे पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगतेंग की 11वीं कक्षा की छात्र मिस पेमल हमो से तवंग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में विषय पर चंद शब्द।
1: टाशी डिले आकाशवाणी तवंग के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पेमा लामू है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगतेंग में 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं कार्यक्रम मेरी बात के तहत कुछ बात साझा करना चाहती हूँ और मेरा विषय है तवंग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में। विद्यार्थी किसी भी देश और समाज का भविष्य होता है। आज हम जो सीखते हैं और जैसे व्यवहार करते हैं वही हमारे कल को बनाते हैं। इसीलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि तवंग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में है। तवंग अपनी सुंदर प्रकृति, वादियों, समृद्ध संस्कृति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी सुंदरता और पहचान को हमेशा बनाए रखें। एक सच्चा विद्यार्थी केवल पढ़ाई में ही अच्छा नहीं होता बल्कि वह अनुशासन का पालन करता है, अपने शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करता है, अपने विद्यालय और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखता है और दूसरों की सहायता भी करता है। हमें

0: पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाते हैं। हमें अपनी मोनपा संस्कृति, भाषा और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने त्योहारों, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को समझना और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी पहचान को बनाए रख सके। आज का विद्यार्थी ही कल का शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, सैनिक, किसान या समाज सेवक बनेगा। यदि हम आज ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो तवंग का भविष्य भी उज्जवल होगा। चलिए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अच्छे विद्यार्थी, अच्छे नागरिक और अपने तवंग के सच्चे जिम्मेदार बनेंगे। अपने ज्ञान, अपने संस्कार और अपने अच्छे कार्यों से हम अपने तवंग को और भी सुंदर, स्वच्छ और प्रगतिशील बनाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगतिंग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस पेमा लामू से तवंग की भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
2: कदरदान बच्चे, बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए क्यूआर स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इस कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म डियर जिंदगी से, जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी के आवाजों में। कुसार मुनीर द्वारा संगीत पद पर इस गीत को लिखा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है नीति मोहन के स्वर में फिल्म जब तक है जान से। गीत गुलजार के हैं व संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म लुटेरा से मोनाली ठाकुर की आवाज में। इस गीत के गीतकार हैं अमिता भट्टाचार्य तथा संगीतकार अमित त्रिवेदी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है फिल्म दोस्ताना से। शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान, विशाल ददलानी के स्वरों में। कुमार के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

0: श्रोताओ, फिल्म दोस्ताना के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए अब हम आपकी किस्मत पर लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनिए फिल्म RRR से विशाल मिश्रा और राहुल शिवलिगुंज के स्वरों में। गीत रिया मुखर्जी के है, वह संगीत विशाल करीम का।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए बेनी दयाल और अनुष्का मनचंदा के स्वरों में फिल्म एक में और एक दो से। इस गीत के गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार अमित त्रिवेदी।

श्रोता, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, जावेद अख्तर द्वारा शब्द रचना पर फिल्म वेकअप सिद्ध से कविता सिद्ध के आवाज में, और इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म आयशा से, निखिल डिसूजा और अमित त्रिवेदी के स्वरों में। जावेद अख्तर के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

0: श्रोताओ, हमारा अगला गीत सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: श्रोतव, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म एंटरटेनमेंट से, आतिफ असलम और सलमाली कोलगरी के स्वरों में। प्रिया पंचल के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म लैला मजनू से यह गीत आदिव असलम और ज्योतिका तांगरी की आवाजों में। इर्शाद कमिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया था जॉय बाउरा ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यू ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म रामाया वस्तवैया से आदिव असलम और श्रिया घोषाल के स्वरों में। प्रिया पंचल द्वारा संगीत पद पर इस गीत को संगीत से संवारा है सचिन जिगर ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म जब वी मेट से, शान और उस्ताद सुल्तान खान के आवाजों में। गीत इरशाद कमल के है व संगीत प्रीतम का।

श्रोता, फिल्म जब वी मेट के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए उस्ताद इमरत खान से सितार वादन। लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद इमरात खान से सितार वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ बलों की प्रतीक्षा करें।

0: का शुभारंभ किया। शिक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री पीडी सोना ने तवांग स्थित थुकतेन शेड्यूलिंग में एसई लर्निंग पर 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। पासीघाट नगर परिषद पीएमसी ने पासीघाट के गोविंद नगर स्थित पीएमसी कार्यालय परिसर में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के साथ महीने भर चलने वाले सेवा मेरा योगदान 2026 और स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान की शुरुआत की। भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण ट्राई द्वारा आगामी 29 सितंबर को अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी ओजाकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिंपो डीएल धोंग्याल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की है।
1: श्री जयशंकर और श्री धोंग्याल ने कई विकास परियोजनाओं

0: शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 45 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक के से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्र क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितने ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकती। श्री मिश्री ने कहा है कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का पालन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों के भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे।
2: HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। ये विमान स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जो आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी असैन्य हेलीकॉप्टर है। ये उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये अपतटीय अभियानों सहित असैन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 2033-34 तक वायुसेना को 2 सीट वाले 29 MK-1A हल्के लड़ाकू विमान सौंपने की योजना है। बेंगलुरु से सुधिंद्र।
1: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT-Parnaik Jayant ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित डिक्लेमेशन और चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया है। इन प्रतियोगिता का आयोजन राज्यपाल की पहल पर प्रधानमंत्री के देशव्यापी आह्वान के समर्थन में राज्यपाल सचिवालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य नशे के खतरे को समाप्त करना और एक स्वस्थ, सशक्त और अधिक जिम्मेदार समाज का निर्माण करना है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को और देश के सामने मौजूद सभी गंभीर सामाजिक चुनौतियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए, जिसमें परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समुदाय साझा जिम्मेदारी की भावना के साथ मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जागरूक नागरिक की समाज को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विनाशकारी प्रभाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान की थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष का स्वच्छ ही सेवा अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें स्वच्छता लक्षित इकाइयों और स्वच्छ सार्वजनिक स्थलों का रूपांतरण, स्वच्छ पाठशाला फॉर युवा स्वच्छता, सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता में समृद्धि शामिल है। देशव्यापी अभियान के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के मालोतारिन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए स्वच्छ पाठशाला युवा फॉर स्वच्छता का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वच्छता की आदत को विद्यालय से अपने घरों, गांवों, कार्यस्थलों और कार्यालयों तक ले जाने का आह्वान किया। शिक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री PD सोना ने तवांग स्थित थुपतेन शेरुपलिंग में SEE लर्निंग पर 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का आयोजन कार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्य विभाग द्वारा थुपतेन शेडुपलिंग फाउंडेशन तवांग के सहयोग से किया गया है। कार्यशाला का उद्देश्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ सामाजिक भावनात्मक और नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर देना है। 3 दिवसीय कार्यक्रम शिक्षकों को सामाजिक भावनात्मक और नैतिक यानी SEC लर्निंग के

बेहतर समझ विकसित करने तथा करुणाशील, जिम्मेदार और मूल्य आधारित सीखने के वातावरण तैयार करने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। पासीघाट नगर परिषद पीएमसी ने पासीघाट के गोमिन नगर स्थित पीएमसी कार्यालय परिसर में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के साथ महीने भर चलने वाले सेवा मेरा योगदान 2026 और स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान की शुरुआत की। सेवा मेरा योगदान 2026 के तहत पीएमसी वार्ड पार्षदों, नगर निकाय के अधिकारियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, युवा समूहों

0: इस सितंबर को अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम दूरसंचार उपभोक्ताओं और उद्योग से जुड़े अन्य हितधारकों तक पहुंच बनाने तथा हाल के समय में दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ट्राई द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश ड्रग डी एडिक्शन सोसाइटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नई दिल्ली स्थित नेशनल ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर एम्स के सहयोग से नाहरलगन में डॉक्टर्स, नर्सिंग अधिकारियों और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों के लिए मादक पदार्थों के सेवन विकार यानी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण के पहले चरण की शुरुआत हुई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति के विधेयक और प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है।
0: और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेकबॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Morgan Bagra. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. During his official visit to Bhutan from 16th to 18th September, Dr. Jayashankar and his Bhutanese counterpart, Leonpo D.N. Dhungyal, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Dr. Jayashankar and his Bhutanese counterpart jointly inaugurated and launched several developmental projects. The ministers also welcomed the operationalization of the UPI-based facility enabling Bhutanese nationals to make digital payments in India using Bhutanese mobile applications. India and Nepal discussed measures to facilitate greater market access for products of both countries. The Ministry of Commerce and Industry in a statement said that during the two-day meeting of Intergovernmental Subcommittee on Trade, Transit and Cooperation to Control Unauthorized Trade, which concluded yesterday, both sides reviewed a wide range of issues. It was related to market access, customs and trade facilitation, standards, food safety, border infrastructure, rail and road connectivity, and other trade-related matters. The Indian delegation was led by Joint Secretary in the Department of Commerce, Ujjwal Kumar Ghosh, while the Nepali delegation was led by Joint Secretary in the Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Buddha Bahadur Gurung. Union Defence Minister Rajnath Singh will grace the handing over ceremony of HAL platforms to the Indian Air Force and Pawan Hans in Bengaluru today. The public sector aviation manufacturer HAL will hand over 2 LCA FOC trainer aircraft to IAF, 4 Dhruv next generation helicopters to Pawan Hans, and the first HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force. A contract of 16 LCA fighter aircraft and 4 twin seaters in FOC configuration was placed in 2010. HAL plans to deliver 29 MK-1A twin-seater LCA aircraft to the IAF by 2033-34. Indian Railways has approved a 493 crore rupees project for the construction of around 38-kilometer new rail line between Mukutban and Gachanchur in South Central Railway. The Railways Ministry today said that the new rail line will provide a shorter and more efficient rail route, reducing travel distance, transportation time and associated costs. It will also provide an alternative route to decongest the existing Wardha

ना होगा. बार बार प्रैक्टिस करने से ग्रेजुअली यू विल रियलाइज द बेनिफिट. और जितना भी आपके पास डर है, मे बी ट्रू फियर और फेब्रिकेटेड फियर, ऑल दोस फियर विल डिसअपीयर जेन्युइन कंपैशन होने से. डर खत्म हो जाता है. डर कहाँ से आता है? मोह से आता है. मोह अटैचमेंट. मोह खत्म होते ही डर भी खत्म हो जाता है. दिस डेज वी मीट मेनी यंग पीपल सेइंग आई एम हैप्पी. सो ऑल दिस फियर इंस्टेबिलिटी दे ऑल कम फ्रॉम योर नेगेटिव वेज ऑफ थिंकिंग. व्हेन यू रिड्यूस एंगर जेलसी हेट्रेड यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट यू विल हैव ट्रैंक्विलिटी पीस एंड हैप्पीनेस. आई एम नॉट सेइंग आई एम अ ग्रेट प्रैक्टिशनर but I do read all the time, reflect a little bit, maybe because of this. In my life, you know, my life went so smoothly, so happily. The other day also I mentioned that I am not good in making money, things like that, never tried to do that, but still my life went so well. I am now 74, still I am physically quite well, quite happy. We lost our country because your mind is not talking about what is missing. मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, बिल गेट जैसा पैसा भी मेरे पास नहीं है. जो जो चीज़ आपके पास नहीं उसको गिनते रहो तुम, पूरा जिंदगी अब भूख से भर जाएगा. लेकिन आपके काउंट, डोंट काउंट द मिसरीज, काउंट द ब्लेसिंग्स. दिस डज नॉट मीन टू से वी आर परफेक्ट, वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स, बट इफ यू थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड यू कैन बी हैप्पी. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई लेफ्ट हैंड इज मिसिंग, बुरी बात है ना, माई लेफ्ट हैंड इज मिसिंग. Then there are two ways of thinking about it. One, for the rest of your life, you just think about this missing hand and feel miserable. देखो इन सब के पास हाथ है, देखो मेरा बाएं हाथ नहीं है, ये सोच करके दुखी हो जाओ. आपका दुखी होने से वो बाएं हाथ ऊपर आ जाएगा क्या? By feeling sad, your left hand will come up. No. Instead of that, खो गया तो खो गया, साले को गोली मारो. मैं यही बोलता हूँ आजकल, साले को गोली मारो. जो अब कुछ नहीं आपके काबू में नहीं कर सकते उसको बोलो. In English, you say, go hell with you. लेकिन मेरे पास बाएं हाथ नहीं लेकिन दाएं हाथ है. दाएं हाथ से लिखता है, दाएं हाथ से सामान उठाता है. अभी दुनिया में देयर सो मेनी पीपल हु डोंट हैव बोथ आईज, बोथ हैंड्स, बोथ लेग्स. आई एम नॉट मेकिंग इट अप, देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट, स्टिल दे हैव टू स्माइल एंड लिव. ऐसा होता है जिंदगी में कर पर. समटाइम्स योर फैमिली मेंबर डाइज, दिस हैपेंस, दैट हैपेंस, बट नेवर नेवर गेट डिस्करेज. सी द लाइट. प्रकृति के नियम के मुताबिक दिन रात दोनों बनाए ना. दिन ही दिन होगा तो क्या होगा फिर? हम लोग सब प्रकाश को अच्छा लगता है, लेकिन दिन ही दिन हो रात ना होने से सब पागल हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट नहीं होगा फिर. दिन में जितना भी दुख दर्द है रात को सो के फिर वो गायब हो जाता है, फिर अगले दिन एक नया जन्म लेता है. सो लाइक दैट इन लाइफ, यू नो. सो देयरफॉर समटाइम्स वी यूज द वर्ड सफरिंग, बट आई प्रेफर टू यूज इट चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज. इफ यू फेस द चैलेंज, स्टडी इट, यू विल गेट न्यू एक्सपीरियंस, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ. Human mind is made for that. Therefore, when we talk about compassion, it is really not like helping only others, not you. But if you practice loving kindness, compassion, the first beneficiary is yourself, not others. I can meditate on compassion for all of you. That may not have any effect unless I am spiritually very, very highly enlightened. But I immediately, my inner door opens and sees everybody like my friends. I feel very happy, very happy. Right? So these are the source of happiness, longevity, everything. These are inner treasures. No thieves can steal. डाकू भी छीन के नहीं ले सकता. बाकी सामान तो आजकल डाकू भी नहीं, चोर भी नहीं चाहिए. लेकिन जो अंदर का गुण है, loving kindness, compassion, nobody can steal it. And it will be useful for this life and for many lives to come. So loving kind, when we talk about loving kindness and compassion, they are basically a state of having no hatred to other people, non-hatred. Both are non-hatred. Hated नहीं होता उसमें. But the difference is loving kindness is saying, loving kindness is more affirmative. It is saying how nice if everybody meet with happiness. And compassion says how nice if they are without suffering. So little bit difference in terms of the stance, perspective, but basically same. Therefore, the Buddha said, if you have one quality, one practice in the palm of your hand, you have all the practices, all the qualities in the palm of your hand. And what is that quality? Compassion. Well, look at this. Compassion by definition means how nice if all sentient beings are without suffering. Now imagine if you genuinely have that kind of compassion, then how can you exploit others? How can you take advantage of others? And when you have a clear picture of the reality of everybody, you know. So every time you see people with very beautiful clothes, you feel concerned. You see very, very poor people, you also feel concerned.
when you

सी समबडी गोइंग अप, मेरे पास ऐसे होता है, पता नहीं आजकल थोड़ा पागल हो रहा होगा मैं, कोई ऊपर जा रहा है, मैं पहले कभी नहीं देखा ऊपर जा रहा है, बेचारा कहाँ जा रहा होगा। मेरे मन में ऐसे आ जाता है, पता नहीं कुछ करे कर मकान बना रहे, बेचारा कितना साल इसमें बैठेगा, राइट। सो सेवंथ दलाई लामा सेड, तो मैं क्या चुन फोमो सुंदर लते जाऊं चलू नमजूर फोटो छे चुन चम्मा तो दुगी मिसी केवा न्यम न्यम तुन दुवे के न्यम टोची नमजी नाउ सुन दिखोवा। This is a quotation from Seven Dalai Lama, where he says, you look at the so-called high people.

उसको भी हम लोग जीने नहीं देता. एंड हियर यू नीड टू रियली क्लियरली अंडरस्टैंड मच ऑफ द सफरिंग्स दैट वी आर एनकाउंटरिंग आर अननेसेसरी सफरिंग. अननेसेसरी सफरिंग मीन्स सफरिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन स्टुपिडिटी, ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल कैलेमिटी एंड अदर सफरिंग्स दैट यू एनकाउंटर टू सम एक्सटेंट अंडरस्टैंडेबल. बट जो सफरिंग हम लोगों ने बना हुआ है क्या जरूरत है. सो वी शुड एंडेवर टू रिड्यूस दिस man-made suffering, man-made problems, unnecessary problems. And then as a Buddhist, of course, you should fine-tune your mind, your habit through meditation or habit forming, whatever you want to call it, such a way so that you can travel from peace to peace, life after life. Because when we talk about life after life, it's not a hypothesis. Now there are so many people who very clearly remember their past lives. It has been now recorded. And I invited some of the leading scientists who wrote many books to Dharamsala during a conference. So there are many, many people who remember, right? So with this kind of understanding, plan for, as a Buddhist, not just 5-year plan, but many lives plan, o karnachi. So once you develop this kind of a state of positive mental outlook in accordance with the reality, then you will be able to see why compassion is necessary. Normally we go more for the negative things, not for the positive, because we don't know the reality. If you know the reality, think about reality. Shunyata hoya, impermanence hoya, interdependent origination hoya, or jo aadmi samne baitha ye hoya, koi bhi ho, usko theek se hum soch ke dekhenge, naturally love and compassion, positive things come. This is actually good news. You should think about this a little bit. And this is kind of my conclusion. I thought about it and I may be wrong, but my understanding is the more you understand the law of nature, the more your mind can come closer to positive ways of life. And most of the negative things that we develop are because of not understanding the reality. And I always give an example. For example, on this table, let us say there are two very elderly people, one woman, one man, over 90 years old. And both are not only very elderly, but also very sick. On the body there are like pus and blood spoozing out. Aisa do bura ya budi is magic upar. If they are here, that's the reality, hai na? The reality, hai na? This reality you can see. This old man, this old woman, you can see, I can see. That's the reality. Now what happens? When you see this reality, will that make you develop more positive emotions or more negative emotions? That's a very important point that I'm making. क्या होगा? पॉजिटिव इमोशन ज्यादा होगा कि नेगेटिव इमोशन ज्यादा होगा? नेगेटिव इमोशन ज्यादा नहीं होगा, मैं बता दूंगा आपको. क्योंकि इनको देख करके शायद कोई आप लोगों में से कोई भी नहीं बोलेगा कि साला बूढ़ा बूढ़ी कहाँ से आ गया, गंदा यहाँ कराए में, इसको भगा दो. कोई बोलेगा? अगर दिमाग ठीक नहीं होगा तो बोल सकता, नहीं तो नहीं बोलेगा. इंस्टेड ऑफ दैट यू विल से बेचारा कौन होगा, इनको कोई देखने वाला होगा नहीं होगा, बेचारा इनको पानी पिलाओ, बेचारा इनको हॉस्पिटल ले जाओ. करुणा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? ये मैं बोल रहा हूँ. दिस इज अ बिग लेसन आई एम गिविंग यू, प्लीज थिंक अबाउट इट. सिमिलरली इफ आई अंडरस्टैंड मोर अबाउट यू, आई विल डेवलप मोर कंपैशन, मोर लव, मोर अफेक्शन, नॉट एंगर, हेटेड थिंग्स लाइक दैट. सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कंपैशन एंड ऑल द गुड क्वालिटीज इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ. यू कॉल इट एम्प्टीनेस, यू कॉल इट इम्परमानेंस, व्हाटएवर. ऑलराइट, थैंक यू, गुड लक विद ऑल योर एंडेवर्स.

मीडियम विथ 197.2 मीटर यानी 521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:11 हुए हैं। श्रोताओ, कार्यक्रम जरोखा से पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। उपायुक्त तवंग जिला से प्राप्त सूचना अनुसार तवंग जिले के मेनखर बुईपो क्षेत्र के ऊपरी हिस्से से भारी भूस्खलन हुआ है। स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि भूस्खलन की गतिविधि अभी भी जारी है तथा मलबे के खिसकने और आगे भूस्खलन होने की संभावना बनी हुई है। अतः औदुंग नमित गरखर गांव जिंतिंग तथा आसपास के निचले क्षेत्रों के सभी निवासियों एवं यात्रियों से अत्यधिक सतर्क रहने की अपील की है। सभी नागरिक कृपया ध्यान दें, प्रभावित क्षेत्र तथा नालियों और जलधाराओं के आसपास अनावश्यक आवाजाही न करें। नदी नाले और जल निकासी मार्गों के किनारे तथा निचले क्षेत्रों से दूर रहे, विशेषकर बारिश के दौरान और बारिश के बाद। भूस्खलन के मलबे को स्वयं साफ करने अथवा उसके पास जाने का प्रयास न करें। पानी का स्तर अचानक बढ़ने, मलबे के बहाव, जमीन में दरार या पहाड़ी से असामान्य आवाज आने पर तुरंत सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाए। किसी भी नए भूस्खलन, जलमार्ग में रुकावट या अन्य बदलाव की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दे। मिनसंग नाला के संवेदनशील क्षेत्रों में रेत उत्खनन अथवा निकासी गतिविधियां से बचे। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि डीडीएमए यानी डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी सुरक्षित निर्देशों का सख्ती से पालन करें, जब तक कि क्षेत्र को सुरक्षित

घोषित नहीं किया जाता। सूचना समाप्त हुआ। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम शेदुन लेरिम के अंतर्गत गेलोंग जम्बा वांगचू और साथियों से जोरवा चुटरुक। शाम के 7:10 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम आज की कविता। इसमें आप सुनिए एलाइट इंग्लिश स्कूल के 5वीं कक्षा की छात्र मिस तेंजिन डुंडुप से अंग्रेजी में कविता। कविता का शीर्षक होगा ब्यूटिफुल प्लैनेट्स। आज शाम के 7:11 पर कार्यक्रम दर्पण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिए एक ही कलाकार गायिका लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म प्यासा सावन, फिल्म फकीरा, फिल्म कभी अजनबी थे, फिल्म लव इन टोक्यो, फिल्म जूली, फिल्म सनम बेवफा, फिल्म फर्स्ट लव लेटर्स की चंद नगमे। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा शाम के 7:50 पर रीजनल न्यूज। शाम के 7:55 पर सुनिएगा फिल्म बुज द प्राइड ऑफ द इंडिया से अरिजीत सिंह की आवाज में एक देशभक्ति गीत। आज रात 8 का वक्त रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 सुनेंगे न्यूज एट 9। तो श्रोताओ, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 19 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह कल हमारी सभा आरंभ होंगे दोपहर के 2 बजे। दोपहर के 2:30 पर आप सुनिएगा भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कल दोपहर के 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दोपहर के 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर के 3:33 का वक्त रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। कल शाम के 4:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार शाम के 4:55 पर। शाम के 5:35 पर संगीत छोटन गन्न लामू और साथियों से मोनपा लोकगीत। कल शाम के 6:20 पर आप सुनिएगा गेलोंग जम्बा वांगचू और साथियों से जोरवा चुटरुक। तत्पश्चात आनी सिटिम संगमो और आनी यांगजिन लामू से ग्यावे शब्दन खेन रिम्बुचिक शब्दन युंगनेक मोनलम। कल शाम के 7:10 पर सुनिएगा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। शाम के 7:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम साजोर आवाज। इसमें कल आप सुन पाएंगे फिल्म सिलसिला से किशोर कुमार और लता मंगेशकर और फिल्म मेरे जीवन साथी से किशोर कुमार के आवाजों में चंद गीत। कल शाम के 7:55 पर आनंद लीजिएगा एक देशभक्ति गीत। कल रात के ठीक 8 आप सुन सकेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। कल रात के

अपेक्षकृत 15 मिनट पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या 8:45 मिनट पर तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनिएगा न्यूज एट 9। 9:16 पर कल हमारे केंद्र से सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम चरोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे मनपा में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाबल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और HTT-40 सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में उपस्थित थे। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को दो हल्के विमान LCA और तेजस, इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को चार ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने विमान का नाम अंकुर रखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to 30 days. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आज की कविता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए एलाइट इंग्लिश स्कूल तवांग के 5वीं कक्षा की छात्र तेंजिन डुंडुप से अंग्रेजी भाषा में एक कविता। कविता का शीर्षक है ब्यूटीफुल प्लैनेट्स।
3: Tashidile, my name is Tenzin Dunob and I am a student of class 5 from Elite English School. Today I am going to recite a poem and the title of my poem is Beautiful Planet, written by Lizzie Muller. I hope you all will enjoy this recitation. Let's begin. We live on a beautiful planet. Planet Earth is what we call home, and it is our job to take care of her everywhere we roam. Pick up the garbage on the street. Be kind to all you meet. Appreciate the beauty around you. Make good choices every day. Go out of your way to take care of our beautiful planet. We ride our bike to school in the morning. Turn off the light when we go outside. We show respect for every living things. Let this song be our guide. We live on a beautiful planet, the third planet from the sun, and it is our job to take care of her, each and every one. Thank you.
2: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया इलाइट इंग्लिश स्कूल तवांग के 5वीं कक्षा की छात्र तेंजिन शिरप से अंग्रेजी भाषा में एक कविता। कविता का शीर्षक था ब्यूटीफुल प्लैनेट्स। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम दर्पण। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए एक ही गायक कलाकार गायिका लता मंगेशकर के स्वर में चंद नगमे। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा आइए सुनिए फिल्म प्यासा सावन से गायिका लता मंगेशकर के स्वर में। गीत संतोष आनंद के है व संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए, गायिका लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म फकीरा से। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: श्रोताओं अगला गीत सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया के स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स ओटीटी पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।
0: श्रोताओं इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत गायिका लता मंगेशकर की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए अगला गीत, देव कोहली द्वारा शब्द रचना पर फिल्म कभी अजनबी थे से गायिका लता मंगेशकर के स्वर में, और इस गीत को संगीत से सजाया है विजय सिंह ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म लव इन टोक्यो से, गायिका लता मंगेशकर के स्वर में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जेरी पंचल ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म जूली से। गायिका लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दर्पण अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर रीजनल न्यूज। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले के अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। नवनियुक्त अभ्यर्थी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभाग शामिल है। 20वें रोजगार मेले के साथ अब तक विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम आनिया ने आज लोकभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों ने रणनीतिक योजना और नीतिगत सहयोग, बुनियादी ढांचे तथा संपर्क व्यवस्था के विकास और राज्य में सतत एवं समावेशी विकास के रास्तों सहित विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। राज्यपाल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध जनजातीय विरासत और सीमावर्ती राज्य के रूप में रणनीतिक महत्व रखने वाला प्रदेश है। ऐसे में राज्य के लिए विकास संबंधी समाधान नवाचार आधारित होने के साथ साथ क्षेत्र विशिष्ट भी होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग दीर्घकालिक दृष्टिकोण, आंकड़ा आधारित नीतिगत मार्गदर्शन और साक्ष्य आधारित योजना के माध्यम से राज्य के विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। यह योजना राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, पारिस्थितिक संपदा तथा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने आज कहा है कि राज्य में अब तक 78,587 एकड़ क्षेत्र में अफीम की खेती और 64.59 एकड़ क्षेत्र में गांजे की खेती नष्ट की जा चुकी है। ईटानगर में आयोजित 9वीं राज्य स्तरीय एनकोर बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने इस कार्रवाई में भूमि मालिकों के खिलाफ कार्रवाई को भी शामिल करने की बात कही। मुख्य सचिव ने नियमित रूप से जिला स्तरीय एनकोर बैठक के आयोजन और एनकोर पोर्टल पर सटीक रिपोर्टिंग पर भी जोर दिया। उन्होंने ड्रोन के व्यापक उपयोग, एनडीपीएस मामलों और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े संपर्कों की व्यवस्थित रूप से पहचान तथा अपराधियों की निगरानी के लिए एक मजबूत मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने पर भी जोर दिया। 9वीं राज्य स्तरीय एनकोर बैठक का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश की समन्वित कार्रवाई की समीक्षा करना और उसे और मजबूत करना था। बांस के पर्यावरणीय, आर्थिक और सतत विकास संबंधी महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज विश्व बांस दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बांस केवल एक पौधा नहीं है, यह हमारे घरों, हस्तशिल्प, परंपराओं, आजीविका और वनों के साथ हमारे संबंधों में गहराई से जुड़ा हुआ है और वास्तव में यह अरुणाचल प्रदेश का हरित सोना है। उन्होंने लोगों से बांस के इस सदियों पुराने महत्व को पहचानने और इसके सतत उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही समृद्ध जानकारी और शिल्प कौशल को संरक्षित करने पर भी जोर दिया। इस बीच विश्व बांस दिवस के अवसर पर ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश बांस एवं बेत प्रौद्योगिकी केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने लोअर सुबनसिरी जिला प्रशासन के प्रत्येक परियोजनाओं में सामुदायिक जरूरतों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है ताकि विकास का लाभ सीधे प्रत्येक परिवार तक पहुंच सके। उन्होंने ये बात विकसित भारत पहल पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उपायुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य स्थानीय प्रशासनिक प्रयासों

0: Education yesterday, convened by Rupam Sharma, co-convened by Dr. Askari, and coordinated by Dr. Bomken Bam Kamdak. The initiative aimed to foster regional innovation, drawing faculty and researchers from institutions including USTM, Guwahati University, NIRIST, North Lakhimpur University, and RGU. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हुए हैं। डीजे पेश है एक देशभक्ति गीत फिल्म बुज द प्राइड ऑफ इंडिया से, गायक अरिजीत सिंह के स्वर में। मनोज मुंतजिर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर्को ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। आप है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। और कलका से आप है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बड्डा बजाज। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म इम्तिहान से यह गीत, गायक किशोर कुमार के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। और इस गीत के बोल है रुक जाना नहीं।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। डीजी श्रोता, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान के मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा, और असम से आप हैं हितेंद्र दास। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म द ग्रेटर गैम्बलर से यह गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के आवाजों में। आनंद बख्शी द्वारा शब्दबद्ध पर इसे संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने, और इस गीत के बोल है पहले पहले प्यार की मुलाकात।

0: श्रोताओ हमारा अगला गीत सुनेगा इस संदेश के बाद।
1: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
0: श्रोताओ इस वक्त आप व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाइशी गीतों

आने ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत। नरगोदा छत्तीसगढ़ से आप है महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दीशा गोस्वामी। और निमादाबाद सिंध हरियाणा से आप है जसबीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म अवतार से यह गीत, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल द्वारा संगीत निर्देशन पर आनंद बख्शी के लिखे बोल पर इस गीत को आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत के बोल हैं दिन महीने साल।

श्रोताओं, अगला नगमा पेश करने की हमें गुजारिश की है पैगम लो बस्ती से आप है पेमा टशी कर्मु चोटन लम ड्रेमा और फुनसो वंगमो। आप सबकी पसंद पर आइए आने लेते हैं फिल्म डिस्को डांसर से यह गीत पार्वती खान की आवाज में। अंजान द्वारा लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है बब्बी लहरी ने और इस गीत के बोल है जिम्मी जिम्मी जिम्मी आजा।

श्रोताओं, अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खिमू से। आप है तेंजिन सिरिंग, थुपतन सिरिंग, लोपसंग तोपतन और कुंचो संगे की। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म सोतन की बेटी से यह गीत, गायक किशोर कुमार के स्वर में। स्वनन किरकिरे के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है वेदपाल ने। और इस गीत के बोल है, कौन सुनेगा, किसको सुनाए।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033-914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना न भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्म गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर, 8:45 पर समाचार सिंधिया तथा रात्रि की 6:00 बजे सुनिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती। श्रोताओं, 20वें एशियाई खेलों का बिगुल बज चुका है। हालांकि आधिकारिक उद्घाटन समारोह कल होना है, लेकिन भारत का विजय अभियान आज से ही शुरू हो गया है। आज के अंक में हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है। हम बात करेंगे जापान के टोक्यो पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के बड़े बयान पर। चर्चा होगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, जिसने आज सुबह जापान को धूल चटाकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। साथ ही भारत के उस जीत की भी बात करेंगे, जहां टैगबॉल के मैदान पर तिरंगे की धमक हुई है। कल के उस मैच की भी बात होगी, जहां भारत ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। और 46वें फिडे चेस ओलंपियाड के तीसरे चरण के दौर की भी बात करेंगे, जहां पे निर्णायक मोड़ पर मैच पहुंच चुका है। तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले 15 मिनट तक। तो श्रोताओं, चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर की तरफ, जो आ रही है महिला क्रिकेट के मैदान से। जापान के आईची नागोया में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के अभियान की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की है। क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने मेजबान जापान को 8 विकेट से धूल चटाकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस मैच की पूरी रिपोर्ट जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारी सहयोगी दिव्या से। दिव्या, बताइए कैसा रहा हमारी बेटियों का प्रदर्शन?
1: जी जया, आज नागोया के कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में भारत की महिला गेंदबाजों का ऐसा कहर देखने को मिला है कि जापानी टीम पूरी तरह से असहाय नजर आई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जापान की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 57 रनों पर ही ढेर कर दिया। और भारत की तरफ से सबसे घातक गेंदबाजी की श्री चरणी ने, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और 4 विकेट चटकाए। रही सही जो कसर थी वो शेफाली वर्मा ने 2 विकेट में पूरी कर दी। इसके बाद रन चेज में शेफाली वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ नाबाद 40 रन कूट डाले और भारत को 8 विकेट से एक तरफा जीत दिला दी। अब भारतीय टीम 20 सितंबर को सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी।
0: क्या बात है दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारी विमेंस इन ब्लू ने तो कमाल कर दिया है। श्रोताओं, मैं जानती हूं कि आप इस वक्त गाड़ी चला रहे होंगे, घर पर होंगे या फिर दफ्तर में, लेकिन जहां भी हैं अपनी विमेंस इन ब्लू के लिए तालियां तो बनती है। जो लोग इस वक्त घर पर आराम से बैठकर ये शो सुन रहे हैं, वो अपने कमरों को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दे। और हाँ, जो लोग हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, वो बस मन ही मन हमारी टीम को वेल डन कह दे, क्योंकि आपका ध्यान सड़क पर होना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसे खेल की जो इस बार एशियन गेम्स में अपना डेब्यू कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टेकबॉल की। और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत की क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने इतिहास रचते हुए इस खेल के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने जापान की टॉप सीड खिलाड़ी को हराकर हर किसी को चौंका दिया है। तो चलिए इस नए खेल में भारत की उम्मीदों पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी मुकेश से।
2: जी हाँ जया, आज एशियाई खेलों के नगोया सिटी हिगाशी स्पोर्ट्स सेंटर से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अपने पहले ही एशियाई खेलों में 24 साल की भारतीय खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा ने ग्रुप ए के बेहद कड़े मुकाबले में जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त युइना साकामोतो को 2-1 से हरा कर तहलका मचा दिया। इसके बाद उन्होंने कंबोडिया की खिलाड़ी को भी मात दी और सीधे सेमीफाइनल का टिकट कटाया। शनिवार को उनका मुकाबला इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। और जया, अब केवल एक जीत भारत का पहला ऐतिहासिक मेडल पक्का कर देगी। हालांकि मिक्स डबल्स में भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हार गई है, लेकिन रेपचेज के मुकाबले में अभी पदक की आस बाकी है। जया, एक और निराश करने वाली खबर यह है कि सॉफ्ट टेनिस के मेंस टीम इवेंट में क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम को इंडोनेशिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और उस टीम का सफर अब यहीं पर समाप्त हो गया है।
0: शुक्रिया मुकेश इस बेहतरीन अपडेट के लिए। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। श्रोताओं, भले ही एशियन गेम्स की स्पर्धाएं आज से शुरू हो गई हैं, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत कल से हो रही है, जहां ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉट पुट के मौजूदा चैंपियन तंजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से ठीक पहले भारत के केंद्रीय युवा मामले और

0: मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। जापान में भारत की राजदूत नागमा मलिक ने टोक्यो में उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। खेल मंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इन खेलों में भाग ले रहे 503 सदस्य विशाल भारतीय दल का नेतृत्व और उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां खुद उपस्थित हैं। टोक्यो से आ रही रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर मांडविया ने वहां पहुंचकर भारतीय एथलीटों के रहने, उनके खान पान और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार का लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं है बल्कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। एक विशेष बातचीत में खेल मंत्री ने यह दोहराया है कि भारत का विजन बहुत लंबा और स्पष्ट है कि सरकार मिशन 2036 ओलंपिक्स को ध्यान में रखकर काम कर रही है, जिसके लिए 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट खेल बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि जापान की धरती पर हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन यह तय करेगा कि हम वैश्विक मंच पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खेल मंत्री के इस दौरे से निश्चित रूप से हमारे 300 से अधिक उन युवा खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा जो पहली बार एशियाई खेलों जैसे बड़े मंच पर उतर रहे हैं। चलिए अब एशियन गेम्स के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की तरफ, जहां टेनिस के विश्व कप यानी डेविस कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले में भारत और साउथ कोरिया के बीच दो दिनों की महाटक्कर की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन के दोनों सिंगल्स मैच समाप्त हो चुके हैं, जिसमें भारत फिलहाल 0-2 से पीछे चल रहा है, लेकिन यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। कल इसके बाकी बचे हुए निर्णायक मैच खेले जाने हैं। आज के मैच पूरी रिपोर्ट के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी निखिल की रिपोर्ट।
1: सियोल के ओलंपिक टेनिस सेंटर में आज भारतीय टेनिस फैंस के लिए दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। डेविस कप 2026 के इस बेहद अहम नॉकआउट मैच के पहले दिन मेजबान दक्षिण कोरिया ने भारत पर 2-0 की बढ़त बनाई। पहले सिंगल्स मैच में भारत के युवा खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश ने शानदार शुरुआत करते हुए पूर्व वर्ल्ड नंबर 157 कोन सुन वू के खिलाफ अपना पहला सेट 6-3 से जीता, लेकिन अंत में दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी के अनुभव के आगे वे मुकाबला 6-3, 3-6, 4-6 से हार गए। इसके बाद सभी की निगाहें भारत के टॉप सिंगल्स खिलाड़ी सुमित नागल पर थी। नागल ने भी पूर्व ऑस्ट्रेलिया ओपन सेमीफाइनलिस्ट चुंग ह्योन को बेहद कड़ी टक्कर दी और पहला सेट 6-2 से अपने नाम किया, लेकिन चुंग ह्योन ने वापसी करते हुए मैच 6-2, 4-6, 5-7 से अपने नाम कर लिया। पहले दिन भारत भले ही 0-2 से पीछे हो गया है, लेकिन कल होने वाले डबल्स मैच में एन श्रीराम बालाजी और निक्की पोनाचा की जोड़ी से भारतीय फैंस को शानदार वापसी की पूरी उम्मीद है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स गेम।
0: अब बात करते हैं कल के मैच की, जहां भारत ने अफगानिस्तान पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है अब तक की। भारतीय क्रिकेट टीम ने कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों के विशाल अंतर से हराया। इस धमाकेदार जीत के साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर शानदार क्लीन स्वीप पूरा किया। यह T20 इतिहास में भारत की अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है।
2: In fact, it's the fastest by anybody amongst test playing nations. Take a bow for Abhishek Sharma.
0: भारत ने सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया था और इसके बाद मंगलवार को खेले गए मैच में भी टीम इंडिया ने इतने ही अंतर से जीत हासिल की थी। अगर कल के मैच के मुख्य आकर्षण देखें तो अभिषेक का शतकीय तूफान हम देख सकते हैं, जहां पे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मात्र 30 गेंदों में शतक जड़कर फुल मेंबर देशों के बीच T20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कुल 34 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के और 9 चौके शामिल थे। इसके अलावा जो सबसे आकर्षण के केंद्र में एक है विशाल स्कोर, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 221 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें संजू सैमसन ने भी 50 रन का योगदान दिया। इसके अलावा 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने टिकने नहीं दिया और पूरी टीम 14 ओवर और एक गेंद में सिर्फ 94 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए और रवि बिश्नोई ने 26 रन देकर भी 3 विकेट छटकाए हैं। क्रिकेट के इस जश्न के बीच चेस ओलंपियाड के तरफ चलते हैं, जहां भारत के मुकाबले अभी भी काफी रोमांचक स्थिति में चल रहे हैं। आज शतरंज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है।

46वें फेडर चेस ओलंपियाड 2026 का तीसरा दौर है और आज के मैच अपने अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहे हैं। भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने अब तक अपने अजेय क्रम को बरकरार रखा है। अगर अभी की हम ताज़ा रिपोर्ट देखें, जानकारी देखें, तो जो पहले दौर में अर्जुन एरिगेसी को अप्रत्याशित हार मिली थी, अब वे आज बोर्ड नंबर 3 पर शानदार वापसी कर रहे हैं। वे इटली के फ्रांसिस्को सोनीस के खिलाफ इस समय पूरी तरह से हावी हैं। वहीं बोर्ड नंबर 1 पर वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और इटली के सबिनो ब्रुनेलो के बीच भी बहुत ही पेचीदा और बराबरी का मैच चल रहा है। वहीं बोर्ड नंबर 2 पर आर प्रज्ञानंदा ने लोरेंजो लोडिकी के खिलाफ एंड गेम में मामूली बढ़त बना रखी है। शानदार फॉर्म में चल रहे निहाल सिरीन भी बोर्ड नंबर 4 पर मजबूती से डटे हुए हैं, इस मैच को जीतने की बेहद मजबूत स्थिति में भी है। अगर हम महिला टीम की बात करें तो ग्रीस के साथ हमारी भारतीय महिला टीम का मुकाबला चल रहा है। भारत के दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल अपने अपने बोर्ड पर ग्रीक खिलाड़ियों के खिलाफ बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त बना चुकी हैं और किसी भी वक्त भारत के पक्ष में पहला अंक ला सकती हैं। वहीं आज के मैच में स्टार खिलाड़ी कोनेरू हम्पी की वापसी हुई है, वे बोर्ड नंबर 1 पर संयम के साथ खेल को आगे बढ़ा रही है। अब चलते हैं बैडमिंटन की बात करते हैं। शिलांग के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही है नॉर्थ ईस्ट जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप। आज भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए यहां से बहुत बड़ी और ताजा अपडेट आ रही है। दरअसल टीम चैंपियनशिप के फाइनल्स में असम की टीम ने ऐतिहासिक दबदबा दिखाते हुए चारों श्रेणियों यानी कि बॉयज, गर्ल्स, मेन्स और वुमेन्स के गोल्ड मेडल जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया है और इस खिताबी जीत के साथ ही असम की सीनियर टीमों ने नेशनल गेम्स 2027 के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई भी कर लिया है। असम की जो स्टार और अंतर्राष्ट्रीय शटलर हैं अश्मिता चाहिला की अगुवाई में टीम ने 3-0 से एक तरफा जीत हासिल की है और खिताब अपने नाम किया। वहीं अगर हम पुरुष टीम की बात करें तो फाइनल में असम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में शुरुआत में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और मणिपुर को 3-1 से हराकर मेंस टाइटल पर कब्जा किया। इसके अलावा बॉयज टीम ने भी असम के जूनियर खिलाड़ियों बॉयज टीम में जो जूनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को 2-0 से मात दिया है। टीम इवेंट्स समाप्त होने के बाद आज दोपहर से ही व्यक्तिगत श्रेणियों के नॉकआउट मुकाबले शुरू हो चुके हैं और यह चैंपियनशिप कल अपने अंतिम दिन प्रवेश कर रही है जहां व्यक्तिगत श्रेणियों के विजेताओं का फैसला होगा। और अब बुलेटिन के खत्म होने का समय आ रहा है, लेकिन जो ताजा अपडेट आ रही है कि भारतीय टीम शतरंज से अभी ताजा अपडेट आ रही है कि राउंड 3 में भारतीय पुरुष टीम इटली पर अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स में भारत के स्टार अर्जुन एरिगेसी बोर्ड नंबर 3 पर जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ महिला वर्ग में दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने ग्रीस के खिलाफ भारतीय टीम को बेहद मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों में ही भारत की इस दोहरी जीत पर आधिकारिक मुहर लग सकती है। इसके अलावा अगर हम एशियन खेल की भी बात करें तो 2 दिन के बाद हॉकी का भी मैच होने वाला है जो कि भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी हमारे गौरव की बात है। वो मैच भी एशियन में शुरू होगा और अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी में हमारी टीम कहीं भी पीछे नहीं है। अगर महिला की बात करें या फिर पुरुष टीम की बात करें, दोनों ही टीमें अपनी मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा जो और भी आकर्षण के केंद्र बने होंगे वो हॉकी के अलावा बहुत सारी खबरें भी हैं हमारे पास। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। स्पोर्ट्स स्कैन में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। भारतीय एथलीटों को चीयर करते रहिए क्योंकि आप जब तक मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे तभी हमारा भारत जीतेगा। तो अब इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
2: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
3: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
4: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
5: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से

0: केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
1: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
2: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है।
0: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब

0: स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
1: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज सम्पन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी NTA की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
2: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and UAE reaffirm their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit.